0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: नथी रोके सके केपीए के अग में ही सोमनाथ बनाए छड़े अथन हर हंध के सोमनाथ बनाण हनन जी रवायत रही आए हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा का इस्लामाबाद इंदड़ मुजाहरीन के रोकने लाए हिकमत अमली तैयार करे वरती जरियन मूजिब खैबर पख्तूनख्वा का इंदड़ मुजाहरीन के रोकने लाए मुख्य रस्तन ते खंदकू खोटण जो फैसलो कयो वयो मोटरवे ए जीटी रोड ते एतजाजी काफरन के रोकने लाए खंदकू खोटणी वयूं आहिनि 26 नंबर नाके मारगला ए टेक्सला जे वेझो पिण खंदकू खोटण जो फैसलो श्रीनगर हाईवे जीटी रोड 9 भरसा बे अगी कंटेनर रख्या व्या श्रीनाथ चौक डीजी चौक ए मारगला भरसा बे कंटेनर रख्या व्या आहिनि पंजाब हुकूमत अटक पुल ते लोही सीखण वारा कंटेनर पहुचाए छॾिया आहिनि जॾहिं त पंजाब जे सिध समा वारे वज़ीर उज़मा बुखारी चयो आहे त पीटीआई बानीअ जा ॿार लंडन में आराम पिया कनि हिते केपीए जे ॿारनि खे सियासत लाइ इस्तेमाल कयो पियो वञे पीपल्स पार्टी तरफ़ा जमायत इस्लामी जी लांग मार्च जी हिमायत सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह चयो त बिलावल भुट्टो ज़रदारी बि पेट्रोल लेवीअ जे ख़ात्मे जी ॻाल्हि कई आहे पीपी मामलो क़ौमी असेंबली ऐं सेनेट में बि उथारियो तेल अघनि में वाध सां आवाम जूं तकलीफ़ूं वधनि थियूं जमायत इस्लामी सां सियासी इख़्तिलाफ़ पंहिंजी जाइ ते पर 3 मार्च जी हिमायत कयूं था संदन एतिजाज पुरअमन हूंदो आहे कंहिं बि सियासी पार्टीअ खे पुरतशद न बणायो वञे दुनिया में तेल जूं क़ीमतूं घटि थियण लॻियूं पाकिस्तान में क़ीमतूं वधाइण ते ज़ोर पेट्रोल जो फी लीटर अघु 1000 ताईं पहुची सघे थो पेट्रोलियम वारे वज़ीर अली परवेज मलिक चयो आहे त महांगाई सटियल अवाम लाइ खतरे जी घंटी वॼाए छॾी संदसि चवणु हो त जमायत इस्लामी सियासत चिमकाइण बंदि करे पेट्रोलियम जी खोट थी त पेट्रोल फी लीटर अघु 1000 ताईं वञी पहुचंदो अवाम जी तकलीफ़ जो अहसासु आहे पेट्रोल अघनि में अवाम खे रिलीफ ॾेई रहिया आहियूं आलमी मार्केट में तेल जा अघु आसमान ते पहुतल आहिनि खितो इंताई नाज़ुक दौर मां गुज़री रहियो आहे क़ौमी मफ़ादनि ऐं मुल्की ज़रूरतनि मूजिबि फ़ैसिला कया पिया वञनि अञा पेट्रोल जी खोट न आहे

आलमी मार्केट में तेल सस्तो थी वियो, पेट्रोल ऐं डीजल जे अघ में लात जो इम्कान। आलमी मार्केट में क्रूड ऑयल जे अघ में घटताई रिकॉर्ड कई वई आहे। अमरीकी तेल 1.58% घटताई खां पोइ $100 फी बैरल थी वियो, जॾहिं त बरतानवी तेल $103 ऐं अमारती तेल $117 फी बैरल थी वियो। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि तालीमी इंतिज़ामनि बाबति इजलास, तालीम वारो वज़ीर सैयद सरदार शाह, चीफ सेक्रेटरी ऐं ॿिया अमलदार शरीक। वॾे वज़ीर पारां ॿीहर तामीर थियल स्कूलनि में दाख़िला मुहिम शुरू करण जी हिदायत। सैयद मुराद अली शाह चयो त सिंध में 838 नवनि स्कूलनि जी तामीर मुकमल थियण वारी आहे। नवनि स्कूलनि सां लॻभॻ 2.5 लख ॿारनि लाइ तालीमी मौक़ा पैदा थींदा।

डॉक्टर समेत एक ही कुटुंब के पंज घर भाती जा लाश हथ एस एस पी जुबेर नजीर शेख मूजिब एहसन आबाद वे इलाके के फ्लैट में ज़ाल मुड़स ए संदन टिन बार लाश मिलिया पुलिस जांच में इनकशाफ थो है तो डॉक्टर उमर कैंसर के मुर्ज में मुबतला हो महीनों अग अस्पताल में इस्तीफा भी डिनी हुई वे वजीर सेहत मुराद अली शाह घरू वजीर ज़ाल अंजार वाक़े जो नोटिस वरतो रिपोर्ट तलब

राइट ऑप्शन में वेंदो उते एल आर के लिखी सेंड कंदो पंहिंजो पंहिंजो नालो पंहिंजे ॻोठ जो नालो पोइ सेंड कंदो 888 ते ऐं फेसबुक जी असांजी आई डी आहे GFM88 जी आई डी आहे असांजो पेज आहे फेसबुक जो तव्हां उन ते बि पंहिंजे सवाल जो सही जवाबु मोकिले सघो था ऐं तव्हां असांजे कॉल ज़रिए बि पंहिंजा नाला नोट कराए सघो था सवाल जो सही जवाबु ॾेई सघो था असांजो नंबर आहे 0333-22-13-22-88 छो त जंहिं ॿिए दोस्त खे जेका बि सहूलियत हूंदी आहे तव्हां उन ते पंहिंजो सवाल जो सही जवाबु मोकिले सघो था ऐं सवालु तमामु आसान आहे थोरो गौर कयो पंहिंजे वॾड़नि सां सलाह मशवरो ज़रूरु कयो छो त उमिरि जा जेके वॾड़ा हूंदा आहिनि उन इन्हनि गुजरातनि खे ॼाणींदा आहिनि त गुजरात माना गुझ लिक त उनजो मक़सदु छा आहे उन जी माना छा आहे ऐं उन गुजरात में कहिड़ा लफ़्ज़ आयल आहिनि ऐं उनखे असां कीअं ॻोल्हियूं त उहे मिली पवंदा आहिनि ऐं मां तव्हांखे आसान करे ॾिनी आहे गुजरात त ॿिनि पवनि ते मुश्तमिल आहे त उमिरि मुंहिंजे देस में क़ुरान न इहा असांजी गुजरात आहे असांजो सवालु आहे साईं मुंहिंजा सीने में दिलि दिलि में दर्द दर्द में तशंगी तशंग में आरज़ू आरज़ू में हसरत हसरत में हिजाब हिजाब में उमीद उमीद में ख़्याल ख़्याल में तसवुरु तसवुरु में तस्वीर तस्वीर में तूं तो में अदा अदा में हया हया में नज़ाकत नज़ाकत में शरारत शरारत में गुस्सो गुस्से में बनावट बनावट में मोहबत मोहबत फिदा जी हसीन तख़लीक़ आहे

जी समझ प्रोग्राम रोशन सुबह में असावां के गुजारत नोट कराई आ गुजारत जका बिन पवन ते मुश्तमिल आ है ए गुजारत के बुझण सा थोड़ो सोच ए समझण जी जरूरत आ है ए जे करे अवां के का गाल समझ में नथी अचे त पांजे झूनलन खां पांजे वडलन बुजुर्गन खां अवां एड़ी मालूमात गुजरात वारी वठी सको था इन में को ऐब कोन है चवंदा आहिनि त पुछणा न मुझणा तव्हां मालूमात वठी सको था असांजी अॼु जे प्रोग्राम जी गुजरात आहे त उमिरि मुंहिंजे देस में क़ुरान न जी हा उमिरि मुंहिंजे देस में क़ुरान न समझा जिते पदमणियूं प्यार जे पटनि ते रीत सां बेलड़ा खणी कुंजनि जे कतारनि जीअं घूर मोटन थियूं जिते मैसूम ॿारड़ा माउ खां लिकी वसकारे जे थधे नवान में ऐं टोभनि ऐं तराइनि में वेंझण लाइ भॼी निकिरनि जिते किरड़ कांडेरा ऐं रोहिड़ा वसकारे जो साओ लिबास पहिरण खां पोइ फिरदोस जो ॾेख था ॾियनि जिते हिकु पासे हमरचे जा मधुर संगीत सुरनि सां भिटूं बि पड़ाॾो थियूं कनि ऐं उते पखियुनि जूं मिठियूं लातियूं ॿुधण में थियूं अचनि जिते दुलावर ईअं महसूसु थींदो आहे ॼण ज़िंदगी जे राहनि ते दर्द ऐं पीड़ान जा पोखियल थूहर पहाड़ पहाड़ खां पटे कंहिं उछलाए छॾिया हुजनि तॾहिं चवंदा आहिनि त जन्नतुल फिरदौस आहिनि ॿई कंदियूं मेहराण जूं

जी आसमिन प्रोग्राम रोशन सुबह जारी ऐं सारी आहे तव्हांजो असांजो साथ रहंदो ठीक यारहें वॻे ताईं हिन वक़्तु असांजे स्टूडियो जे घड़ियाल में सुबुह जा ॾह पिया थियनि हिन वक़्तु आहे ख़बरुनि जो ऐं ख़बरुनि खां बाद में न्यू कमर्शियल ब्रेक थींदा उन खां बाद में वापसि ईंदासीं कॾहिं बि न वञिजो

0: बैरिस्टर गौहर चयो त अलीमा ख़ान जी गिरफ़्तारी हालतूं ख़राब करण जो पहिरियों क़दम आहे। अलीमा ख़ान खे गिरफ़्तार करणु या नज़र बंदि करणु तशद्दुद ऐं चिकटाण खे हथी ॾियण जे बराबरि आहे। अलीमा ख़ान जी गिरफ़्तार जी मज़म्मत कयूं था, अहिड़े क़दमनि खां पासो कयो वञे। अलामा राजा नासिर अब्बास चयो त अलीमा ख़ान खे हिरासत में वठी चयो वियो त अमुन खे ख़तरो आहे, असां लाइ सभु रस्ता बंदि कया विया आहिनि।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में बेसब
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज। आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज। आप सुन रहे थे
3: खास वाले और मीरपुर खास की आवाज सिंध धरती के मतवाले, हम मीरपुर खास वाले सिंध धरती के मतवाले हम मीरपुर खास वाले और मीरपुर खास की आवाज जी हम।
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
4: This program is brought to you by
5: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing.
6: Sindh ka har chappa har gosha
7: GAFM 88 network se juda
6: GAFM 88 network Sindh ki awaaz.

जी साईं, मुंहिंजा प्रोग्राम रोशन सुबुह में वापसि अची चुका आहियूं ऐं असांजो अॼु जो सवाल आहे, उमिरि मुंहिंजे देस में क़ुरान न। थोरे सोचण ऐं समुझण जी ॻाल्हि आहे ऐं ज़रूरु कंहिं पहिरीं प्यारे दोस्त सवाल जो सही जवाबु ॾिनो आहे ऐं मुंहिंजे ख़्याल में उहो पहिरें नंबर ते आहे। ऐं साईं, मुंहिंजा प्यार जो अनमोल तोहफ़ो खणी असां जेको आहे सो नफ़रतनि जो ॿिज ख़तमु करियूं, चौ तरफ़ प्यार जा ॿूटा पोखियऊं, इहे सभु जाहिल रस्मूं रीतूं बि ख़तमु कयूं। सम्झा उहे प्यार जा जेके पेचर आहिनि उहे तमामु बहितर आहिनि। ग़लति ॻाल्हियुनि खां, ग़लति कमनि खां, कंहिंजी दिलि आज़ारी करण खां बहितर आहे त असां जेको प्यार जो जिते कुर्ब मिले असां उते पहुचूं, पंहिंजा पखड़ा उते ॾियूं ऐं असां पंहिंजो जेको आहे सो दिलि उते ठारियूं जिते प्यारु मिले।

साईं मुंहिंजा ख़्वाब जेसीं ताबीरनि जे पोपटनि खे पकड़ियुनि तेसीं कंहिं आराम बाबति सोचणु जिदोजहद कंदड़ लाइ मायूसी फैलाए थी अणथक ऐं बिना कंहिं वक़फ़े वारी जिदोजहद ई मंज़िलनि जो मुंहुं ॾेखारे थी। वक़्त जूं वीरूं किथे बि हाणे बीहारे सघनि थियूं। कंहिं ॾाहे जो चवणु आहे त नंढा माण्हू माण्हुनि ते ॻाल्हाईंदा आहिनि, वॾा माण्हू ॻाल्हियुनि ते ॻाल्हाईंदा आहिनि, ऐं अज़ीम माण्हू नवनि नवनि ख़्यालनि सोचुनि ते ॻाल्हाईंदा आहिनि। ईअं ई नंढा माण्हू वक़्त खां थोरो पोइ ते ऐं वॾा माण्हू वक़्त खां सां गॾो गॾु हलंदा आहिनि। जेकॾहिं वक़्त जूं वाघूं ओॾां उन्हनि जूं वाघूं, पर अज़ीम माण्हू पाण खे कॾहिं बि वक़्त जे वाघुनि हवाले न आहिनि कंदा, ऐं हू वक़्त जे जूं वाघूं मोड़ण बाबति सोचींदा आहिनि ऐं वक़्त खे हिकु नओं रूप ऐं हिकु नओं दग ॾियण जी कोशिशि कंदा आहिनि, ऐं हू वक़्त जे वाघुनि खे मज़बूती सां झले मुस्तक़बिल ॾांहुं सफ़रु शुरू कंदा आहिनि।

0: It's 10:30 a.m. This time check is brought to you by. It's 10:30 a.m. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च व्यू क्रीम एलो ग्रेड स्पार्कलिंग और दे शानदार. Miracle Glow Arch Beauty Cream.
2: It's सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इनमें मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिंदी हन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
3: हर बार जन नंढड़ा कदम एक नई दुनिया दा वधन था पर पोलियो इन कदमन के रोके भी सके तो इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम तैयार खतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधायन था इन्हें जे ख्वाबन के उड़ाम देन था पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी.
2: अगर खूबसूरती

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: सां पंहिंजो अंदाज़ बणायो वधीक दिलकश ऐं वधीक स्टाइलिश पार्टी हुजे ऑफिस हुजे या के खास मौके जी तयारी
1: हर माशूम वरकोटी वरकोटी कदमुना दयो नवी दुनिया पियो रसदार माशूमान दा बदन दिफाई ताकत ज्यादा हुई
0: जिंदगी गुजारियो।

0: मादसा कुरान की सते सिर्फ
1: महीनो आहे जेको सेप्टेम्बर महीनो आहे इहो नओ महीनो आहे ऐं सेप्टेम्बर लातीनी ज़बान जे लफ़्ज़ सेप्टम मां वरतल आहे जंहिंजी माना आहे सतो पुराणे रोमन कैलेंडर में ही महीनो सतो हो पर यूरोपी कैलेंडर में हिन जो नंबर नओ आहे ऐं हिन ई महीने दौरान 21 सेप्टेम्बर यानि अॼोको जेको ॾींहुं आहे 21 सेप्टेम्बर ते सिजु बिल्कुलु ख़तिस्तवा ते चमकण लॻंदो आहे ऐं सॼी दुनिया में ॾींहुं राति बराबरि थियनि था उत्तर अधु गोल में खिज़ां जी मौसम ऐं ॾखण अधु गोल में बहार जी मौसम थिए थी हिन महीने में 30 ॾींहं थियनि था त साईं मुंहिंजा इहा आहे पंहिंजो सेप्टेम्बर महीने जे हवाले सां अव्हां ताईं थोरी मालूमात ऐं हिन वक़्तु मास्टर मंज़ूर कलाम आहे अव्हां जे नाम पिया खे

जी हाँ, समय प्रोग्राम रोशन सुबह में अवां के इंतजार पांजे सवाल जे पांजे गुजारत जे सही जवाब बुधण जो अवां के इंतजार जरूर आए अवां के इंतजार जरूर होंदो त अवां जा नाला भी प्रोग्राम में शामिल थियन। पर असां प्रोग्राम में सभिनी दोस्तन कोशिश कई आहे ऐं प्रोग्राम में वक़्तु ॾिनो आहे, टाइम ॾिनो आहे ऐं काफ़ी दोस्तनि जेको आहे उको धुको तक़रीबन तमामु दोस्तनि उको धुको हयो आहे ऐं कंहिंखां न पुछियो आहे न कंहिंखां मालूमात वरिती आहे। असांजी जेका अॼु जी गुज़ारत हुई त उमिरि मुंहिंजे देस में क़ुरान शरीफ़ जा काफ़ी नाला आहिनि उन्हनि मां उहा गुज़ारत भॼे थी ऐं उमिरि मुंहिंजे देस में जेको हुनजो देस आहे उमर मारवीअ जो जेको देस हुयो उहो थर जो इलाइक़ो हुयो। असांजा काफ़ी दोस्त उन इलाइक़े में ई वेठा आहिनि ऐं इन गुजरात मां ज़ाहिरु थिए पियो त उमिरि मुंहिंजे देस में त उमर मारवीअ जो जेको देस हुयो उहो थर जो इलाइक़ो हो, मीरपुर ख़ासि जो इलाइक़ो हो, मिठी जो इलाइक़ो हो, उमरकोट हुयो ऐं इलाइक़ो इहो ई आहे त जेको ॿियो पाओ हो देस वारो उहो थर जो इलाइक़ो उमर मारी ते चवे त उमिरि मुंहिंजे देस में क़ुरान न, क़ुरान शरीफ़ जा नाला आहिनि त क़ुरान करीम ऐं क़ुरान शरीफ़, क़ुरान मजीद ऐं फुरक़ान हमीद। फुरक़ान त हू चए थी मुंहिंजे इलाइक़े में फुर कोन्हे, चोरी कोन्हे, मुंहिंजे इलाइक़े में अमन आहे। मारी चए थी त उमिरि मुंहिंजे देस में फुर कोन्हे, अमन आहे। उन दौर जो जेको हीअ ॾिठी हुई जेका गुजारत हुई उहो चवे थी त उमिरि मुंहिंजे देस में फुर कोन, यानी क़ुरान न फुरक़ान। फुरक़ान हमीद क़ुरान शरीफ़ जो नालो आहे, क़ुरान शरीफ़ बि क़ुरान जो नालो आहे ऐं क़ुरान मजीद बि आहे, क़ुरान करीम बि आहे। क़ुरान शरीफ़ जा तमामु घणा नाला आहिनि पर उन्हनि नालनि मां फुरक़ान हमीद, फुरक़ान माना अमुन आहे, चोरी कोन्हे, ॾोह कोन्हे, फुर कोन्हे। उमिरि मुंहिंजे देस में क़ुरान न, यानी फुर कोन्हे, चोरी कोन्हे ऐं देस आहे थर। इहो असांजी गुजारत हुई ॾिठ ऐं उन में असांजा जेके दोस्त आहिनि उन में सही जवाबु जंहिं बि दोस्त ॾिनो आहे उहो आहे नज़ीर हुसैन मंगड़ियो रोहिड़ी खां। तमामु बिल्कुलु उन महिनत कई आहे ऐं उन जेकॾहिं उको धुको हयो आहे, कोशिशि कई आहे त बिल्कुलु हुन जी दुरुस्त आहे। असांजो नज़ीर हुसैन मंगड़ियो उन जी पसंदि जो असां कलाम हलाईंदासीं आख़िर में ऐं बाक़ी दोस्तनि जा नाला असां खणंदासीं। नाला आहिनि हाफिज़ नईम लाइ काज़ी क़ुर्बान समटियो पने अकिल खां ऐं ॻोठ ठुल जुणे जो खां इक़रार इबरार ऐं वक़ार जुणे जो, ममन सिद्दीक पाड़ो ॾेपलो खां, अरशद मीराणी सखर खां, मोहम्मद कासिम चांडियो ॻोठ खां, अली अकबर चांडियो, ज़मीर हुसन सोलंगी ॻोठ मोलिन माशी खां, गुलाब खान कुंभर ॻोठ कंगन खां, अज़ीज़ सोलंगी मीरपुर ख़ासि खां, फ़तेह मोहम्मद कनासरो, फारूक अहमद कनासरो, फराज़ अहमद ऐं बेबी शुगफ्ता नाज़ कनासरो ॻोठ सराई, मोहम्मद नवाज़ धूण खां ऐं ग़ुलाम मुर्तज़ा लुंड मीरपुर ख़ासि खां, यार मोहम्मद कलोड़ा कॉलोनी लाड़ेकाणे खां, फ़क़ीर एजाज़ अली कलड़ो ॻोठ मसूहब खां, डॉक्टर ज़मीर मीराणी, साईं तारिक मीराणी नौंदरो चौक लाड़ेकाणे खां, डॉक्टर शहज़ाद अज़ीज़ सुमरो ऐं वासिफ़ अली भुगटी लाड़ेकाणे खां, दिलीप कुमार मेंगवाड़ पाबोवेरो खां, सोरा मंगरियो ॻोठ सजरणो मंगरियो बकापुर खां, महबूब अली शर ठरी मीरवा खां, नूर हुसैन तुनियो बदीन खां, नज़ीर खोसो सोबतपुर बलोचिस्तान खां, मोहम्मद पनाह कश्मोर खां, मोहम्मद खान कुंभार हालेपुटा स्टाप खां, तालिब हुसैन मरी ॻोठ लाल मोहम्मद मरी खां, इक़बाल लाशारी ख़ालिक लाशारी झलोरी मीरपुर ख़ासि खां, बरकत जमाली जाफ़राबाद बलोचिस्तान खां ऐं सैद ताहिर हुसैन शाह सी टी डी लाड़काणे खां, क़ुर्बान अली ख़ासखेली झंडे मरी खां, हाफिज़ रियाज़ कलड़ो ॻोठ फाज़िल कड़े खां कलोड़े खां। दोस्तनि जी वॾी महिरबानी असांजे प्रोग्राम में शामिलु थिया। असांजो अॼु जो विनर आहे, ख़ुशनसीबु आहे नज़ीर हुसैन मंगरियो रोहिड़ी सखर खां। दोस्त जे पसंदि जो कलाम आहे उहो अव्हांखे ॿुधाईंदासीं। उमिरि देस पंहिंजो विसारणु ॾुखियो आहे, आबदा परवीन जो आवाज़ु आहे, गॾिजी पियो ॿुधूं।

जी समेन प्रोग्राम रोशन सुबह में असो अज जो विनर अज जो खुश नसीब नज़ीर मंगरियो रोहिड़ी सखर का हो जैसे पसंद के असा कलाम भी हलायोसे त इन आबदा परवीन के खूबसूरत नगमे से प्रोग्राम रोशन सुबह जो वक्त पहुंचे पोजी पुजाणी से हयाती बखैर इंशाल्लाह अवां सा मुलाकात जरूर थी तेसी तीन मेज़बान नेमत अल्लाह जूने जो के ईंदा इजाज़त अल्लाह निकाह।

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream. Glowing is...
0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream.
2: ईरानी फौज जो कहवी हमले जी सूरत में भरपूर जवाब देण जो ऐलान फातिमुल्लाह हेडक्वार्टर जे तर्जमान चयो आहे त ईरान ते हमलो थियो त अमेरिका जा खिते में मौजूद समूरा आडा निशाने ते हूंदा अमेरिका सां हमलनि में सहकार मुल्कनि खे बि बख़्श न कयो वेंदो

बिन अफसरन समेत छह जवानों के जनाजे नमाज पिशावर में अदा। जनाजे नमाज में घरू वजीर मोहसिन नकवी, गवर्नर के पी के फैसल करीम, कोर कमांडर पिशावर ए बेन की शिरकत, शहीद कैप्टन अबूजर फारूक, शहीद लेफ्टिनेंट शेराज नजीर ए बेन की जनाजे नमाज अदा कई वही। आई एस पी आर मौजूद शहीद आफिसर ए जवानों के मरण की तदफीन अबाड़न इलाकन में फौजी एजाज से कई वी। गुजरियल ढी दहशतगर्दन से मुकाबले दौरान पाक फौज ब आफिसर ए जवान शहीद थे हुआ।

0: बीमारियों का खात्मा हो चुका है, सिर्फ दो मुल्क रहते हैं।
1: शहर शहीद थियल पाक फौज जे बिन ऑफिसरन समेत छह जवानों के जनाजे नमाज पिशावर में अदा। जनाजे नमाज में घरू वजीर मोहसिन नकवी, गवर्नर के फैसल करीम, कोर कमांडर पिशावर ए बेन की शिरकत। शहीद कैप्टन अबूजर फारूक, शहीद लेफ्टिनेंट शेराज नजीर ए बेन की जनाजे नमाज अदा कई वही। ISPR मौजूद शहीद ऑफिसर ने जवानों के मरण की तथी नबाड़न इलाकन में फौजी एजाज से कई वी। गुजरे ढीह दहशतगर्द।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN।
3: सिंध धरती अजामत वाला असी आयूं खास वारा आई। मीरपुर खास जो
4: कमर्शियल ब्रेक। टेस्ट और फेफड़ों की बीमारियों का मुफ्त कैंप, तारीख 26 सितंबर बरोज हफ्ता सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक लगाया जा रहा है, जिसमें शेख सेख अस्पताल लाहौर और पाकिस्तान के आला तालीमी इदारों से तालीम और तरबियत याफ्ता मीरपुर खास के वाहिद चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर गणेश मल खत्री, कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन MBBS DTCD MCPS पल्मोनोलॉजी, TB करोना नमूनिया दमा पुरानी खांसी बलगम में खून आना बार बार नजला जुकाम फेफड़ों में वरम फेफड़ों में हवा या पानी भरना फेफड़ों का कैंसर मोटापे की वजह से सांस या नींद में तकलीफ और सिगरेट नोशी से निजात इन तमाम मसाइल वाले मरीजों का मुफ्त मुआयना और इलाज करेंगे और दवाएं भी मुफ्त देंगे। नोट, डॉक्टर साहब 28 सितंबर से OPD भी करेंगे। एड्रेस माई डायग्नोस्टिक क्लिनिक बिल मुकाबिल माई लैब न्यू टाउन मीरपुर खास। मजीद मालूम के लिए राबता नंबर 03242449327।
5: अगर खूबसूरती खपे तो आर्ट्स अपनायो। आर्ट्स ब्यूटी क्रीम एलोवेरा और एवोकाडो अवां जी सेंसिटिव स्किन के स्पार्कलिंग ए शानदार मिरेकल ग्लो कुदरती चमक ए निखार जो बेहतरीन इंतखाब। आर्ट्स ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट बाय आगास इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड।
0: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है, सिर्फ दो मुल्क रहते हैं। जहां अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
6: पंजे शहर मीरपुर खास में डॉक्टर बाबियत या अल्सर गले में मानी जी रुकावट जिगर जी चर्बी कारी आई फिकी साई वात आई पेट मा रत जो अचन कब्ज बवासीर वजन जो वधी वजन अहड़न तमाम बीमारियन वारे मरीजन जो मुआइनो आई इलाज कंदी आहे। OPD टाइम सूमर आई खमीस सुबुह जो 10 वगे खा मंझंद 2 वगे ताई आई अंगारो आई अरबा मंझंद 3 वगे खा शाम 6 वगे ताई। एड्रेस रहमत मैदा वो जिगर के वेझो आगा खान लेबोरेटरी अली मेडिकेयर सेंटर PM कॉलोनी मीरपुर खास। वधिक मालूमात लाए एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद इरफान अब्बासी 03103844883।
7: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
8: बैंक इस्लाम नीलाय। पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंस।
9: सीनियर फेको सर्जन डॉक्टर अब्दुल अजीज कुरैशी और सर्जन डॉक्टर इसरार मोहम्मद हयात खान सफेद मोती का ऑपरेशन बजरिया लेजर फेको काले पानी का इलाज और ऑपरेशन पर्दों की बीमारियों का इलाज और आंखों की दीगर बीमारियों का इलाज करते हैं। रोजाना सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक, इतवार का दिन है और जुम्मे को ऑपरेशन किए
10: जाते छीन रहा है और
9: हमारा डॉक्टर असलम मोहम्मद हयात।
0: अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
7: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
8: बैंक इस्लाम नी लाया। पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
11: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
12: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
11: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
1: हर माशूम वरकोटी वरकोटी कदमुना दयो नवी दुनिया पलोर रवानवी खुद पोलियो रंज दा कदमुना उद्रवले हुमशी नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम पमहाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई अखपल माशुमानुता द पोलियो द मखनिवी द्वसास की वरकवल महेरवई जकच हुम द गसास की द माशुमानु द बदन दिफाई ताकत ज्यातवी औ द हगी द खूबुन वलवत वजरिमुमी पोलियो یعنی مستقل معذوری
2: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट अच्छी लगती।
4: मेरे पापा ने मेरी बात पक्की कर दी है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब हम कभी नहीं मिलेंगे, मुझे माफ कर देना।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। 1 2 3

के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंह की आवाज।

0: PM. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़। आप सुन रहे

वक्त हालतूं ऐं वाकिया मुसलसल तब्दील थींदा रहनि था। मुस्तकिल हुजे थी सिर्फ़ तब्दीली। हर पल तब्दील थींदड़ वाकियनि जा नवां पहलू वसी ऐं गहरो नुक़्ता नज़र सिर्फ़ इनसाइट विद नाज़िर अमीर सां।

तुम्हारी उम्मीद माजिज़ों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद माजिज़ों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। सुनियो धंधड़ तमाम खूबसूरत मासूम ही सोने समात उनकी मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। पुरकुरे दुआओं के समंदर चाहते की बारिश लाजवर खजानों के साथ दुआ ही पल से पल तक आज से कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात तक नीचे जाकर कमी से आसमान तक जिंदगी से मौत तक चांद से तारे तक से खुशी तक दिल से दिल जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे। सो आमीन या रब्बल आलमीन। जी आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88 नेटवर्क और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जनाब सखर मोरो मिरप्रकाश मटियारी सखरन हेरापुर मातली नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बातें होंगी जनाब। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बातें इसलिए होने वाली है क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपके खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करने वाले हैं। तो अगर आप भी खूबसूरत बनना चाहते हैं, खूबसूरती की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, हमेशा के लिए खूबसूरत रहना चाहते हैं, तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आपकी खूबसूरती में किस तरह से जो है वो जान ला देगा, किस तरह से आपकी खूबसूरती में इजाफा लाएगा और किस तरह से आपकी खूबसूरती को जो है ना वो हमेशा के लिए लॉक भी कर देगा, इस बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए क्योंकि हमारे प्रोग्राम में बहुत ज्यादा वाली ऐसी बातें आप लोगों को मालूम पड़ेंगी जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं या फिर थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुके होते हैं कि भाई हमें क्या चीज ट्राई करनी चाहिए, क्या चीज अवॉइड करनी चाहिए, कौन सी चीजें हमारी स्किन के लिए बेहतर साबित होंगे और कौन सी चीजें हमारी स्किन के लिए सही साबित हो सकती है। ये तमाम चीजें अगर आपको कोई और नहीं बताता तो कोई बात नहीं, हम आपको बताएंगे और बताएंगे भी ऐसे कि आप समझ जाएं कि भाई आपकी स्किन के लिए कौन सी चीजें जरूरी है और कौन सी चीजें आपने अपनी स्किन के लिए जरूरी जरूरी करनी होती है। ओके जी, तो यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है, जितनी भी समाते तमाम तो लोगों को वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया और साथ ही साथ जरा अपना भी तारुफ करवाते हैं। सो लिसनर्स प्रेजेंटिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुना ही होगा। तो बिल्कुल आपके सिद्रा के साथ मौजूद है जनाब इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में, आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाएंगे और खूबसूरती की जरा बातें बताएंगे कि भाई किस तरह से आप खूबसूरत रह सकते और किस तरह से खूबसूरती को हमेशा के लिए अपने पास भी रख सकते हैं। और चाहे आप मर्द हजरात हैं, चाहे आप खवातीन हैं, तो परेशान क्यों होते हैं भाई जान, हर तरह से आप लोगों की खूबसूरती का ख्याल रखा गया और हर तरह से आपकी जो है ना स्किन को प्रोटेक्ट किया गया है, हर तरह से आपको प्यारा प्यारा खूबसूरत बनाने के चक्करों में है ना। तो आप लोग अगर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, शामिल प्रोग्राम लेना चाहते हैं तो क्या तरीकेकार होने वाले वो सब कुछ बताएंगे। और अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो सर आपने हाल चाल बताते जाइए। सो डियर लिसनर्स, अंत के फहालत कैसे ही आपकी हालत है, उम्मीद है शदीदन की बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सुपकुल मूड के साथ सुपकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी ना वो खत्म हो चुकी है, फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मारी ली हैं। आपको पता है ना जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरे पूरे 3 बजे तक, यानी कि 2 घंटे हमारे पास मौजूद होने वाले और इन 2 घंटों में हम आप लोगों के साथ इन्नी शाली बातें करने वाले। तो इन्नी शाली बातों के लिए जरा रेडी शेडी हो जाइए, हमारे प्रोग्राम का ऐसा बनते जाइए। और बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारा इंतजार कर रही थी, ऐसी बहुत सारी अंटियां अम्मियां खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी, यानी कि लंच बनाने के दौरान सभी अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्त से गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला बिकॉज आली रे आली सिद्र आली बोस आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाने के लिए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाते और यहाँ पर ऐसे करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं और आगे से प्रोग्राम किया जाएगा जी आज एक बहुत प्यारे से कलाम के साथ। तो बहुत प्यारे से कलाम जो कि हमारे प्रोग्राम के स्टार्टिंग में होने वाला है जी प्ले, और कलाम सुनते ही कलाम के जैसे ही उस पार आप लोगों से मुलाकात होगी तो आपको बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है और क्या कुछ है जो आज के प्रोग्राम में आप लोगों को पता चलने वाला है। तो आपका हमारा साथ पूरी पूरी 3 बजे तक का सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए। आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लगाइए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाएं।

खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन जोशो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान

0: आप सुन रहे हैं वाई टेशन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश मौजूद है जनाब, जो कि आप इस्तेमाल करके अपनी खूबसूरती में चार चांद लगाने वाले हैं। अगर आप इस्तेमाल करने वाले हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, या फिर आप लोगों को ये लग रहा है कि हम कहां से जाकर परचेज कर सकते हैं, हमारे एरिया में तो मिलते ही नहीं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज करेंगे तो आप लोग जरा अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर चले जाइए, वहां से आपको आराम से डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। चलिए, अगर नहीं भी मिल रहे तो उसका हल भी आप लोगों को बताया जाएगा कि कैसे और कहां से जाकर आप जो है ना परचेज कर सकते हैं, किस तरह से आप अवेलेबल भी करा सकते हैं। बिल्कुल जी, सब बातें की जाएंगी, लेकिन साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को ये बताया जाए कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए टॉपिक यानी कि सवाल क्या होने वाला है। तो आज के प्रोग्राम के अगर सवाल की बात की जाए तो आज मेरा आप लोगों से सवाल कुछ इस तरह से होने वाला है कि आप सारे लोग मुझे बताइए वो कौन सा डर है जो औरत को खूबसूरत बनाता है। हाँ जी, आज आप मुझे ये बताएंगे कि वो कौन सा डर है जो औरत को खूबसूरत बनाता है। बिल्कुल जी, आपने सही सुना। और अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए, और नहीं भी पता है तब भी बनते जाइए, क्यों कोई मसला नहीं। आपको टॉपिक का जवाब आ रहा हो या नहीं आ रहा, लेकिन ये बात है कि भाई तुकाई मार लिया करें, टॉपिक को जरूर से फॉलो कर लिया करें। अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, शामिल प्रोग्राम लेना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जीए लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज ही जनाब, आप सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है। वहाँ पर आइए, आपको हमारे प्रोग्राम लाइव पोस्ट मिल जाएगी जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। बिल्कुल जी, तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे बताइए आप हमारे साथ मौजूद है, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। बिल्कुल जनाब, मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया कि आप मुझे बताएं कि वो कौन सा डर है जो औरत को खूबसूरत बनाता है। हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं कि मर्द को भी खूबसूरत बना देगा वो डर है ना, तो औरत हो या मर्द दोनों ही खूबसूरत हो जाएंगे। आप मुझे बताइए जल्दी से। और इसी के साथ साथ अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करने वाले हैं जनाब, डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराने वाले हैं, तो आपने क्या करना है, आपने जल्दी से नंबर्स को जरा नोट कर लेना है। तो नंबर में अभी आप लोगों को बताने लगी हूँ, नंबर को जल्दी से जो है ना नोट कर लीजिए ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। बस अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर जाएं और आपके हाँ डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश मिलना चाहिए। तो जल्दी जल्दी से डायल कीजिए 0332738 4309। बड़ी 300 73 84 84 9 एंड योर नंबर आहे 03-12-50-25-907 बुरी 312-25-970 ही नंबर्स आहे जेके डायल करे तव्हां पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अवेलेबल कराए सघो था। भले तव्हां दुनिया जे कहिड़े भी कोने में मौजूद आहियो, किथां भी तव्हां असांजो प्रोग्राम ॿुधो था, हर जॻह ते तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अवेलेबल कराए सघो था। बस इन नंबर ते तव्हां राबितो कयो, उन्हनि खे ॿुधायो त बाबा फलाणी जॻह ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम कोन थी मिलेव ऐं असां इस्तेमाल करण चाहियूं था, बराए महिरबानी असांजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए वञो, त हू अवेलेबल कराए छॾींदा। छो त वैसे भी तव्हांखे ख़बर आहे त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका आहे न, ही बाबा पोतल प्रोडक्ट आहे, पोतल सां मुराद इहा त ही सिर्फ़ न सिर्फ़ तव्हांखे पूरे पाकिस्तान में मिलंदो, बाक़ी ॿाहिरि जे मुल्कनि में बि तव्हांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिली सघे थी, छो त ही हिकु इंटरनेशनल प्रोडक्ट आहे ऐं तव्हांजे लाइ इस्तेमाल करण जा होड़ सारा हिन जे लाइ वजूहात मौजूदु आहे। त तव्हां छो इस्तेमालु कंदा, छो त बाबा अहिड़ो प्रोडक्ट हाणे मार्केट में अची वियो आहे, तव्हांजे लाइ बि मार्केट में अवेलेबल आहे। जेके जेके माण्हू सोचनि था त बाबा असां महांगा महांगा प्रोडक्ट अफोर्ड नथा करे सघूं, असांजी जेब असांखे इजाज़त कोन ॾींदी आहे, त तव्हां हाणे डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो यूज़ करे सघो था, जेको तव्हां इस्तेमालु करण खां फौरन बाद ई तव्हांखे रियलाइज़ थींदो त बाबा वाकई ही अहिड़ा प्रोडक्ट आहे जेके असां हमेशा खां इस्तेमालु करणु चाहियूं पिया, ऐं असांखे ख़बर नही, कोई गाइड न पियो करे या असांखे कोई ॿुधाए कोन पियो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम बि मार्केट में अवेलेबल आहे। चलो हाणे मां तव्हांखे ॿुधाए छॾियो, ऐं तव्हां वञो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो परचेस कयो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे यूज़ करणु स्टार्ट कयो, चाहे तव्हां मर्द हज़रात आहियो, चाहे तव्हां ख़वातीन आहियो। बिल्कुल सुना, पोस्ट को जरा लाइक और शेयर करते रहिए और मुझे बताइए वो कौन सा डर है जो औरत को खूबसूरत बनाता है, मर्द को भी खूबसूरत बनाता है, हाँ जी दोनों को खूबसूरत बनाता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारे साथ नजीर कोसो भाई ज्वाइन कर चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम, बलूचिस्तान से आप हमें सुन रहे हैं। कहते हैं कि दर्द अपना हो तो खामोश रहो, क्योंकि दुनिया को दर्द बताने वाले अक्सर तमाशाई बढ़ा लेते हैं, हम दर्द नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। फरवाह हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे। आपकी तबीयत कैसी है? होप यू आर फाइन एंड वेरी नाइस। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतर हूँ, आप बताएं कैसी हैं? ठीक ठाक। और बरकत रमा दानी जमाली बलोच हमें सुन रहे हैं। जी आप भी हमें बलोचिस्तान से ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और अबू हनीफ अल बलोची कहते हैं कि क्या तुम जानना चाहते हो कि मैंने तुमसे कितनी मोहब्बत की है? मैंने तुमसे मिले बगैर तुमसे मोहब्बत की है, मैंने तुम्हें छुए बगैर तुमसे मोहब्बत की है, मैंने तुम्हें देखे बगैर तुमसे मोहब्बत की है। क्या बात है भाई जान, बहुत बढ़िया हो गया ये तो। फरवा गुल हमें सुन रही है, आप ही अर्ज किया है, हम तो आज भी आपको याद करते हैं, तुम भूल गए। अच्छा तुम भूल भी गए, ये कमाल है। हाँ जी वाकई बहुत बड़ा कमाल है। और कहती रिक्वेस्ट है जोड़ा आसमान अंत ठंडायन बाय मुमताज मौलाई डेरी के स्पेशली आप और तमाम लिसनर्स के नाम, चले मैं कोशिश करती हूँ आपकी पसंद का गाना सुनेंगे। और दिया हमारे साथ हैं, दिया क्या कहती हैं? दिया ने लिखा है अस्सलाम वालेकुम डियर से सिद्रा मुस्कान, कैसी आप? उम्मीद की अपने नाम की तरह हंसती मुस्कुराती होंगी। जी जी। और कहती हैं कि हम भी आ गए आपके शो में, प्लीज प्ले निगत नखरा छुना गया डेडिकेटेड स्पेशली रिमशा उरूसा हिरा एंड डेविल। ओके ओके। अच्छा फहीम भाई हमें सुन रहे, कहते कि नजर जी नजर के नजर न लगे कोई सुठो भी हिन कदर न लगे, तोखे डिठो आहे हिन नजर सा या हुन नजर हिन ही हुन में थोड़ो मां कंफ्यूज थी वेंदी आहियां। कहते कि जे हिन नजर सा तोखे नजर न लगे। अच्छा अच्छा वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेले सलामत। कहते अदा छाल आहिनि खुश आयो सफ़ा चाक स्लेट कला मस्जिद डबी आओ असां भी अची वियासीं प्रोग्राम ते लाजवाब आहे हमेशा जीअं अवां वांगे। थैंक यू सो मच प्यारा सोहणा भाउ, पोस्ट के लाइक और शेयर करते रहिएगा। अब्दुल गुलाम कैसर हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं वेलकम जी, आपको भी वेलकम कहते हैं। रशीद खोसो भाई हमें सुन रहे हैं, हैदराबाद से आप हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, थैंक यू। मुख्तियार अली लाशारी हमारे प्रोग्राम में मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ जी, आप बताएं कैसे हैं? और फरवा कहती हैं लाइक और शेयर कर दिया आपका प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया। फहीम भाई आपने भी कर दिया, बहुत शुक्रिया। अब्दुल रजाक भाई हमारे साथ हैं, हली पोटो स्टाफ खान तमासन प्रोग्राम उदू पया, थैंक यू जी, थैंक यू। मोहम्मद राशिद अमान हमारे साथ हैं, सिस्टर सिद्रा मुस्कान खुश रहें आमीन, आपका प्रोग्राम आपके प्रोग्राम का इंतजार रहता है, बहुत शुक्रिया। ये आपकी मोहब्बतें होती हैं बस इस काबिल हमें समझ लेते हैं, वरना ना चीज इस काबिल कहा। एसन अरबानी कहती हैं अस्सलाम वालेकुम मौलाना सलामत, ओ माय फेवरेट आरजी मैडम मुस्कान जी, कैसियां? वेलकम कहते हैं दिल से आपको, गुर्दों से वेलकम कहते हैं। हजार भाई भी आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम हजार भाई। और ऐसे ही आप सब लोग पोस्ट को जरा लाइक और शेयर करते रहिए। यहाँ पर टाइम हुआ है जरा हम जाएंगे जी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब, और शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पर जाएंगे, आप जरा पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए। और मुझे ना ये बताइए डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल किसने किया और डी स्किन ब्यूटी क्रीम कहाँ कहाँ पर अवेलेबल हो चुकी है, डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल करने वाले हैं या फिर नहीं ये भी मुझे बताइए, और टॉपिक को फॉलो करते जाइए। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट, जो कि आप इस्तेमाल करेंगे और खूबसूरत हो जाएंगे।
1: It's 1:30.

0: is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing
2: dhar mashum aur koti war koti kadamuna de yow niwi duniya palor rawanwi khuda polio raz da kadamuna udrawale humshi no padi waja da polio da har muhim pa mahal da polio team da darwaze takulo jawab war kawai aw khpal mashuman ta da polio da makhniwi dwa sas ki war kawal mahirawai zaka ch hum da sas ki da mashuman da badan difai ta kazyatawi aw da hagi da khubun walwat wazari mumi polio yani mustaqila mazuri
3: जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
4: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है
5: सुनते रहो जी एफ एम 90.8

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
0: से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क
2: के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर नेटवर्क ते
4: इन्हीं करे जन दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो का बचाव जब कतरा जरूर प्यारियो छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के बधाई
5: तहजीब व सकाफत से।

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास. आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क. हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर माथिली नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल के फौरन बाद ही आपको जो खूबसूरती मिलने वाली है उसके बारे में जरा बातें की जाएंगी. इसी के साथ साथ आप लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है. बिल्कुल आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया. और अगर आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं तो आप मुझे ज्वाइन कीजिए 8881 पर और फेसबुक पर. तो जल्दी जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए और पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते जाइए. ऐसे ये होता है कि भाई हम बहुत सारे लोगों को बता पाते हैं कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट आपकी खूबसूरती के लिए क्यों जरूरी है. सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज आप सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है. इसी के साथ साथ अगर आप मर्द हजरात हैं अगर आप खवातीन हैं तो हर कोई डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर सकता है. हुई ना मजे की बात. तो जनाब यहाँ पर आप लोगों को मैं बताऊंगी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो क्या ऐसी खास बातें हैं जो कि भाई आप लोगों को आज पता चलेंगी या फिर पहले से पता है लेकिन आप जरा बुढ़े तरह में आए हो तो असा डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी चाहूँ या फिर न वठी चाहूँ. बाबा तहाँ बिना सोचे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करने स्टार्ट कयो तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो जो इस्तेमाल आए ना वो तवां जे खूबसूरती जे लाइ ॾाढो फ़ायदेमंद साबित थींदो. तव्हां दुनिया में बेशक बहुत ज्यादा प्रोडक्ट देखे होंगे जो कि आप इस्तेमाल करते हैं लेकिन आपको वक्ती तौर पर खूबसूरत तो बना देते लेकिन जब आप उन प्रोडक्ट्स का यूज करना छोड़ देते हैं तब आपकी खूबसूरती जो है वो कहीं गायब हो जाती है. आपके चेहरे पर जो निखार आ चुका होता है वो कहीं गायब हो चुका होता है और आपकी खूबसूरती जो है ना वो मानत पड़ जाती है. बहुत ज्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ जाती है जो कि भाई आप नहीं चाहते हैं कि भाई ये होनी चाहिए. तो अगर आप भी इन तमाम चीजों से बचना चाहते हैं और कोई अच्छा सा कोई सेफ सा प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज आपकी स्किन के लिए ही है. और अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस वजह से नहीं इस्तेमाल करें कि भाई हमारी स्किन खराब हो जाती है कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगा पाते हैं तो भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना ये ऑल स्किन टाइप के लिए. और सबसे बड़ी बात और सबसे बेहतरीन बात तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना ये मेडिकेटेड फार्मूला है. मेडिकेटेड फार्मूला है तो बातें खत्म हो जाती है यहाँ पर आकर कि भाई हर स्किन वाला इंसान इस्तेमाल कर सकता है. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि भाई तैयार की गई है उन डॉक्टर्स ने मिलकर तैयार किया है जो कि भाई आपकी स्किन के रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए. तो ना बिल्कुल वही डॉक्टर्स उन्होंने मिलकर डी स्किन ब्यूटी क्रीम को तैयार किया है और इसका फार्मूला जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा फार्मूला है. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि 2-in-1 फार्मूला है यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप यूज करते हैं ना तो ये है तो बेसिकली एक नाइट क्रीम लेकिन जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं ऐसे वाले जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया हो. और इसके अंदर जो है विटामिन ए बीट्स और माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन है और जनाब अल्फा आर्बुटीन है कॉजिक एसिड है ग्लूटाथायोन है. ये तमाम चीजें ऐड की गई हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर. नाम सुनकर ही आपको एहसास होता होगा कि भाई वाकई ये तो कोई महंगा सा प्रोडक्ट लग रहा है. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम को ये इतना महंगा प्रोडक्ट नहीं है ये मुनासिब सी कीमतों में आपको मिल रहा है. आप सारे लोग इसे अफोर्ड कर सकते हैं और इसी के साथ साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप यूज करेंगे तो आपको मिलेगी ऐसी शानदार सी खूबसूरती जिसकी आप हमेशा से जो है ना वो कल्पना करते थे. हमेशा से आप चाहते थे कि भाई हमें भी काश ऐसा हुसन मिलते लेकिन कैसे मिलता तो वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के यूज के फौरन बाद ही आपको मिल जाएगा. क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर विटामिन ई बीट्स हैं और माइक्रो बीट्स जो है ना ये आपकी खूबसूरती में इस तरह से इजाफा लाने वाले हैं जो कि आपने देखा होगा नोटिस करा होगा जो खवातीन बहुत महंगे महंगे फेशियल्स कराती है ना उनके फेशियल्स के अंदर ये विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स ऐड किए जाते हैं तभी उनको बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं. लेकिन जब आप इतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते आपके पास इतने ज्यादा पैसे भी नहीं है तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर लीजिए क्योंकि इसके अंदर भी विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स ऐड किए गए हैं और इसी के साथ साथ ये मुनासिब कीमतों में भी आपको मिल रहे हैं और आपका टाइम भी इतना ज्यादा वेस्ट नहीं होगा कि भाई आप क्या घंटों बैठकर पार्लर जो है वो फेशियल कराते रहे. बस आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करेंगे आपको मिलेगी ऐसी शानदार सी खूबसूरती जिसके आप सपने देखते हैं. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज चाहे आप मर्द हजरात हैं चाहे आप खवातीन हैं हर कोई कर सकता है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल हर एक स्किन के ऊपर किया जा सकता है. यानी कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव हो ऑयली हो
ड्राई हो, नॉर्मल हो, कॉम्बिनेशन टाइप हो, हर स्किन के ऊपर डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज किया जा सकता है. तो कीजिए भाई, किसने मना किया. खूबसूरती हर किसी की ख्वाहिश है जनाब, लेकिन खूबसूरती के साथ अपनी जल्द की मुनासिब केयर जो है ना वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है. अगर आप अपनी रोजमर्रा की ब्यूटी केयर रूटीन में एक खूबसूरत सा इजाफा करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज अपनी रूटीन का हिस्सा बना लीजिए. ये क्रीम आपकी रोजमर्रा स्किन केयर को मजीद आसान और खूबसूरत बनाने के लिए बेहतरीन इंतखाब साबित हो सकती है और आपकी जल्द को नरम, मुलायम और मॉइस्चराइज भी रखेगी. क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज जो है ना आपको खूबसूरत बनाने के लिए किया गया है और आपका टाइम बचाने के लिए किया गया है. आपके पैसों में जरा जो है ना वो ऐसा नहीं कि भाई आप जाएं धड़ाधम बहुत ज्यादा महंगे महंगे आप ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं, डॉक्टर्स को दिखा रहे होते हैं. भाई ये फार्मूला ऐसा है, मेडिकेटेड फार्मूला है, तो इसे आप बेफिक्र होकर यूज कर सकते हैं. एक नहीं प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं. एक नहीं मार्क्स आ चुके हैं उसके लिए भी यूज कर सकते हैं. रंगत का इशू है उसके लिए भी कर सकते हैं. क्योंकि खूबसूरती को मजीद निखारने के लिए अपनी रोजमर्रा ब्यूटी के रूटीन में बस आपने शामिल कर लेना है डी स्किन ब्यूटी क्रीम. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके लिए इतना खूबसूरत सा एहसास होगा कि आप लगाने के फौरन बाद ही कहेंगे आए हाय चस करा दी भाई जान. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करता है और मर्द हजरात हैं खवातीन हर कोई यूज कर सकता है. बहुत ज्यादा वाले फायदे हैं, पूरे प्रोग्राम में आप लोगों को बताती रहूंगी. ये एक छोटा सा टेलर था और साथ साथ यहाँ पर आप लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ साथ डी स्किन का फेस वॉश भी अवेलेबल है. अगर आप डी स्किन का फेस वॉश लगाना चाहते हैं तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. और डी स्किन का जो फेस वॉश है ना, इसकी ये बात जरा मैं आप लोगों को बताती चलूं. तो डी स्किन का जो फेस वॉश है इसको तैयार किया गया है बड़ी ही मोहब्बत के साथ. क्योंकि डी स्किन फेस वॉश के अंदर हाइलोरोनिक एसिड सीरम का यूज किया गया है. हाइलोरोनिक एसिड सीरम जो होता है ना ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा. वो ऐसे क्योंकि इसके अंदर जो है ना तमाम वो चीजें एड की जाती हैं जो कि आपकी स्किन को डीपली क्लीन करने के लिए होती हैं, मॉइस्चराइज रखने के लिए होती हैं और आपकी स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए होती हैं. तो हर दिन को अगर आप बेहतर, रिफ्रेश, खूबसूरत और पुरकशिश बनाना चाहते हैं और आपके चेहरे पर ये जो थकन नजर आती है, ये गर्दो गुबार जमा हो चुका है और काफी ऑयल आपको महसूस होता है कि भाई हमारी स्किन बड़ी ऑयली है, तो हम क्या करें. क्योंकि ऑयल को ज्यादा जो है ना आप बहुत सारे प्रोडक्ट लगा चुके होते हैं लेकिन ये ऑयल आपके चेहरे से जो है ना वो ज्यादा ही नहीं है. और ऑयली जिन लोगों की स्किन होती है जाहिर सी बात है उनके चेहरे पर एक नी प्रॉब्लम भी आ चुका होता है. तो ऑयल को कंट्रोल करने के लिए, अपनी स्किन को हमेशा तरोताजा रखने के लिए, अपनी स्किन को हमेशा कंट्रोल में रखने के लिए आप डी स्किन का फेस वॉश यूज कर सकते हैं. तो डी स्किन का फेस वॉश बिल्कुल जी बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट साबित होने वाला है. आप सारे लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप मर्द हजरात हैं, चाहे आप खवातीन हैं. तो इस्तेमाल करते रहिए और जरा खूबसूरती का ख्याल रखते रहिए क्योंकि ये आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा. तो डी स्किन का जो फेस वॉश है या फिर डी स्किन ब्यूटी क्रीम है, ये दोनों प्रोडक्ट्स आप अपने इजीली किसी भी करीबी जनरल स्टोर से जाकर परचेज कर सकते हैं. अगर फर्ज कर लीजिए नहीं मिल रहे हैं बिल्कुल जी आप डायल करेंगे नंबर्स जो कि मैं आपको बताने लगी हूँ. नंबर्स को डायल करने के फौरन बाद ही आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो या फिर डी स्किन फेस वॉश हो वो अवेलेबल हो सकता है और आप वहां से जाकर इजीली परचेज कर सकते हैं. तो जल्दी से डायल कीजिए 03-12-50-25-907 बुड़ी ट्रेसो बार हाँ पंजाह पंजवी है 970 एंड यू नंबर आहे 03-27-38-43-09 बुड़ी ट्रेसो बट्री है 73-84-309 ये नंबर तव्हां डायल कंदा पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराईंदा ऐं उतां वञी ईज़ीली परचेज करींदा. सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन फेस वॉश तव्हांजे खूबसूरती में आणींदो बाबा चार चंड. सो तव्हां बि अगरि खूबसूरत थियण चाहियो था, खूबसूरती जी दुनिया में कदम रखण चाहियो था, त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल लाज़मी करे ॾिसो. ओके जी, उनखां अलावा तव्हांजा मैसेजेस आहिनि, तव्हांजा फीडबैक्स आहिनि जंहिंजे तरफ़ बिल्कुलु असां अचूं था, लेकिन मां तव्हां खां सवाल पुछो आहे उन जो जवाबु तव्हां मूंखे ॿुधाईंदा हलो. सवाल इहो आहे, उहो कहिड़ो डर आहे जेको औरत खे ऐं मर्द खे ख़ूबसूरत बणाए छॾींदो आहे. हां जी, वो कौन सा डर है जो औरत हो या मर्द हो दोनों को ख़ूबसूरत बना देगा. अब आप मुझे बताइए वो कौन सा डर है आपकी नज़र में. और इसी के साथ साथ मेरे पास आप लोगों को सुनाने के लिए बड़े अच्छे अच्छे से गाने भी मौजूद हैं. तो आइए ज़रा गाना सुनते हैं और आप क्या कह रहे हैं आपके मैसेजेस की जाने भी आते हैं. पोस्ट को लगे जरा लाइक और शेयर कीजिए. आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स.

सवाल रेस किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो अञा ताईं कोन कयो अथव बाबा वञो जल्दी करे अचो

अच्छा भाई, मैंने अभी देखा तो आपके जो पहले वाले मतलब पहले पहले वाले कमेंट्स है ना, वो तकरीबन ही ऊपर चले गए हैं, तो मैं जरा देखती हूँ जितने भी मुझे यहाँ पर कमेंट नजर आ रहे हैं वो जरा रीड कर लेते हैं। और हिदायतुल अहमदानी हमारे साथ कहते हैं कि जवाब सोचिंग के बाद ये जवाब आया कि खुदा से ओके ओके ओके। और हजार भाई कहते हैं कि वो डर है पर्दा जो औरत को खूबसूरत बनाता है, योर टॉपिक आंसर ओके वेरी नाइस। वहीं भाई आपने लिंक शेयर कर दी है ओके, मैं आपका गाना लगाती हूँ बस थोड़ा सा सब्र किया करे। और निदली हमारे साथ कहती है मैंने अभी एक वीडियो देखा उसमें था AI कुछ सालों के बाद इंसान मार देगा, अब ये क्या सच है, लग तो रहा है। अच्छा फहीम भाई कहते हैं दादा क्या सर खाले चुने जो भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कर सकता है, बिल्कुल जी चाचा को तो जरूर यूज करवाइए भाई। और अनवर भाई हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम कहते हैं तबीयत सही आहे न मुर्कन सा सजायल ये जिंदगी जो पंद खुशन जो गुलाब आप पियो मुर्के सजो हंद दुआ आहे तो हमेशा इये ही रहन आबाद कहीं खे भी न अच्छे कोई दिल ते बंद। वाह सही वाह वाह सही वाह। हजार भाई कहते हैं कि आज का सॉन्ग प्ले करना सिस आज कोई अपनी पसंद का चली AI का सही सही सही मैं लगाती हूँ भाई। हजार भाई AI के गानों के जरा शौकीन हो चुके हैं। सही है भाई, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए, आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के भी शौकीन हो जाएंगे। और तबीयत मेरी काफी बेहतर है, आप बताएं कैसे हैं, ठीक ठाक है। कहती है पोस्ट पर चैट नहीं करो आप लोग, हमारे कमेंट गुम हो रहे हैं, ये बिल्कुल यही रीजन है, जो लोग पोस्ट के ऊपर चैट कर रहे होते हैं ना फिर कमेंट्स ऊपर चले जाते हैं। और चाचा खाले तुम्हारे साथ कहते बंडल ऑफ थैंक्स बेटा। अच्छा फहीम भाई को बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं बताएं तो। इंतजार अली हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम ओके तमाम के बीचों भली करी आया। चाचा कहते हैं कि मेरी स्किन भी ऑयली है, मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज करूं, आप डी स्किन का फेस वॉश यूज कर सकते हैं, डी स्किन की ब्यूटी क्रीम यूज कर सकते हैं, दोनों प्रोडक्ट आपकी खूबसूरती को जो है ना वो बढ़ा देंगे और आपके चेहरे पर चार चांद लगा देंगे, तव्हांजे चेहरे जो ऑयल भी कंट्रोल थी वेंदो, तव्हांजे खूबसूरती में भी इजाफो अची वेंदो।

ही पहिरियां गुल छटियां पेर पो रखजा पांजी गाड़ी मां पेर पो रखजा लाइजा अच्छा वफा शहजाद हुसैन कोसो भाई में सुन रहे गरीब आबाद मोरी का तासने प्रोग्राम ज्वाइन कर हुआ है मोहब्बतों प्यारे सोने भाजू और इंतजार भाके ने टॉपिक पर्दा हया और शर्म ओके ओके जी महर इरफान सियाल साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद के थे नाइस शो मैम आरजे आई एम लिसनिंग योर प्रोग्राम फ्रॉम शिकारपुर क्या बात है जी सैन नाना नंजे गो टू रिटायर शिकारपुर वारा मानू भी बार टी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज कर पाया एंड शिकारपुर में भी हर जगह से टी स्किन ब्यूटी क्रीम मिली रही है मां पूछा कराई बिल्कुल मुखे यही खबर पाई तो बाबा टी स्किन ब्यूटी क्रीम शिकारपुर में सफा जोरों शोरों से मिल रही है तो आप सारे लोग जितने भी शिकारपुर वाले लोग हमें सुन रहे हैं टी स्किन ब्यूटी क्रीम आप वहां से भी आराम से परचेज कर सकते हैं

मां कयो तव्हांखे भी फुल मोकल आहे पर पहिरियां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो ठीकु आहे पोइ तव्हांखे नखरा बि ठहंदा जी अर्ज मोहम्मद गोला भाई में सुन रहे हैं जेकब आबासी आपने हमें ज्वाइन किया है जबरदस्त कंपेयरिंग बहुत शुक्रिया थैंक यू खुश रहे आप भी और जी अनवर भाई हमारे साथ हैं

अच्छा अनवर भाई लिखते हैं कि उस्ताद शागिर्द खां पुछो तो बुधाए शादी ऐं जंग में केड़ो फर्क आहे शागिर्द एकदम जवाब दिनो उस्ताद महजरम जंग में दुश्मन सां समझौतो करण जा कुछ मौका मिलंदा आहिनि पर शादी में को भी समझौतो नथो हले उते सिर्फ गैर मशरूत शिकस्त तस्लीम करणी पवंदी आहे केडा त सतायल आहियो अलाह तव्हां सभु जी बिल्कुल आपने सही पहचाना निगत नाज आ चुकी है एंजॉय कीजिए निगत नाज को और मुगल उमरानी भाइयों में सुन रहे हैं बहुत शुक्रिया स्टिकर सामने शेयर कर दिए हैं मीर मुमताज अली जतोई भाई वालेकुम अस्सलाम आदि सदरा बिल्कुल ठीक ठाक आई तमाम चाहे अल्लाह पाक तमाम के खुश रखे हमेशा मुस्कुराइंदे रहो माशाल्लाह प्रोग्राम बेहतरीन लाजवाब कंपेयरिंग आई गोठ आगा खान जतोई लाड़काने खां मीर मुमताज अली जतोई और एस मुमताज मोहम्मद मुदस्सिर जतोई तमाम भाउन जो मोहब्बतूं प्रोग्राम के पसंद कयो पिया आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज कयो बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम तमाम खूबसूरती जे आई तमाम मर्द हजरा तमाम खवातीन हर कोई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सगो था आई फायदो हासिल करे सगो था सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो आई सुना सुना थी वन्यो

अच्छा अली रजा लगारी भाई हमारे साथ है गोठ जाम खान लगारी से। अली रजा लगारी भाई सिस्टर सिद्रा वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, कहती हूँ आपका शो तमाम नाई से सॉन्ग हाले। अच्छा चलें ठीक है ये गाना आपको सुनाएंगे और कहते हैं प्लीज प्ले करना डेडिकेट टू अजहर लगारी, आकिब लगारी, आरजे गुलाम मुस्तफा टालपुर, इमाम बख्श खोखर, खालिक लाशारे। सिस्टर हमारे गांव में ब्यूटी क्रीम नहीं मिलती है, आप बोल रही हैं सिस्टर। अच्छा हाँ मैं बोल रही हूँ, तो जो नंबर आपको बताया ना बिल्कुल उस नंबर के ऊपर आप राबता करके अपने गांव में डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अवेलेबल करा सकते हैं। तो जल्दी से नंबर के ऊपर राबता कीजिएगा और अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन का फेस वॉश अवेलेबल कराइएगा और नाम जरूर उन्हें बताइएगा कि आप कौन सी क्रीम अवेलेबल कराना चाहते हैं। हिदायतुल्लाह भेज दीजिए, आपका गाना भी लगा देंगे। लेकिन कहती अरे मेरे कमेंट्स भी नीचे रह गए नहीं ऊपर चले गए। जी फहीम आपका जवाब मैंने देख लिया था।

माइक्रोबीट्स फार्मुलेशन है, अल्फा आर्बुटीन है, पॉजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर एड की गई है जनाब, ताकि आप लोगों की स्किन जो है वो चमकदार हो जाए, डार्क सर्कल्स खत्म हो जाए, आपके चेहरे पर जो हाइपर पिगमेंटेशन होती है ना वो खत्म हो जाए, या फिर आपके चेहरे पर जो है ना रंगत बहुत ज्यादा डिम हो चुकी है, आपके चेहरे पर एक्नी प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो इन तमाम चीजों को खत्म करने के लिए आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर सकते हैं। और डी स्किन का ब्यूटी क्रीम जो है ना, इसका इस्तेमाल करने के बहुत सारे आपको फायदे मिलने वाले हैं। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है, और इसके अंदर ये जो विटामिन ई बीड्स और माइक्रो बीड्स डाले गए हैं ना, ये 2-in-1 फार्मूला बना देता है जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इससे ये होगा कि भाई आपके चेहरे पर अगर आप ये नाइट क्रीम यूज करते हैं, ये है तो बेसिकली नाइट क्रीम, लेकिन ये 2-in-1 फार्मूला है, जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया हो, कोई बड़ी सी आपने ट्रीटमेंट ले ली हो स्किन की, लेकिन ये मुनासिब सी कीमतों के अंदर आपको ये प्रोडक्ट मिल रहा है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है। तो बस अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर चले जाइए और जनाब वहाँ से नाम लेकर तलब कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम, जिसे आप सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ 2 रातों में आपको अच्छा खासा रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है, तो जरूर से आप ट्राई करके देखिएगा। मैं तो चाहती हूँ आप सारे लोग इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम, आपकी खूबसूरती में इजाफा लाने के साथ साथ आपके चेहरे को चमकाने वाली है, और आपके चेहरे पर इतनी जबरदस्ती खूबसूरती लाएगी कि आप खुद ही कहेंगे कि भाई जान क्या बात है, हम पहले क्यों नहीं इस्तेमाल करे थे। खैर अभी भी कोई देर नहीं हुई है, अभी भी आप जाकर डी स्किन ब्यूटी क्रीम को परचेज कर सकते हैं और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खूबसूरती सिर्फ मेकअप का नहीं, नाम जो होता है ना वो नहीं होता, बल्कि अपनी जिल्द की सफाई, मुनासिब केयर और रोजाना की अच्छी आदत भी आपको खूबसूरत बना सकती है। अगर आप ऐसा ही ख्याल रखते हैं कि भाई अपने चेहरे का ख्याल रखेंगे, रोजाना अपने चेहरे को डी स्किन फेस वॉश से हम जरा वॉश करते रहेंगे, क्लीन रखेंगे, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का रोजाना हम इस्तेमाल करते रहेंगे, तो जब आप ये प्रोसेस डेली बेसिस के ऊपर जब यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो आपको इतना खूबसूरत सा एहसास अपनी स्किन के अंदर महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा कि आप खुद ही कहेंगे भाई ये तो कमाल ही हो गया। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो या फिर डी स्किन फेस वॉश, ये दोनों चीजें आप साथ में यूज कीजिए। और जो लोग ऐसा कहते हैं ना हम क्रीमें नहीं लगाते, हमने कभी अपनी जिंदगी में क्रीम नहीं लगाई, या फिर उन्होंने पहले क्रीमें लगाई थी, उन क्रीमों ने आपकी स्किन के ऊपर जो है ना वो थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट नहीं दिया, और उस वजह से आपको जो है ना थोड़ा सा ये आ चुका है कि भाई क्रीमें तो लगानी नहीं चाहिए क्योंकि क्रीमें अच्छी नहीं होती। जो खास करके लोग मैंने देखे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो क्रीमों से थोड़ा अवॉइड कर रहे होते हैं, तो आप लोगों को ये मैं बता दे चलूं कि जो क्रीमें होती है ना वो आपके चेहरे पर खूबसूरती लाने के लिए होती है, और खास करके जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन के फेस वॉश का यूज करते हैं, तो इससे आपके चेहरे पर जो रंगत आती है, जो निखार आता है, जो खूबसूरती आती है, वो बहुत ज्यादा जबरदस्त आपको मिल जाएगी। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आपके चेहरे के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अपने चेहरे पर अप्लाई करने के बहुत सारे फायदे हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को आप इस्तेमाल किस तरह से करेंगे ये चीज भी जरा आ जाती है। आप बोलेंगे कि भाई आप फायदे तो बता देती, लेकिन डी स्किन ब्यूटी क्रीम को यूज कैसे करना ये तो आप बताती नहीं है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम को यूज करना बहुत ज्यादा आसान है, ऐसा नहीं कि बस आपने कुछ रॉकेट साइंस लगा लेनी है। आपने बस रात के टाइम जो है ना सोने से पहले एक काम करना है कि अपना फेस वॉश करना है। अपना फेस वॉश करेंगे डी स्किन फेस वॉश से, और फेस वॉश करने के बाद अच्छे से अपने चेहरे को क्लीन कीजिए,

स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव होती है, ऑयली स्किन जिन लोगों की होती है, तो वो थोड़ा सा इस चीज को अवॉइड किया करें. जो वे फेस वॉश करने के फौरन बाद ही टॉवल से अपना फेस वॉश जो होता है ना, फेस को सुखाने लग जाते हैं, तो टॉवल का यूज मैं तो कहती हूँ कि भाई अपनी जिंदगी से जरा आउट कर लीजिए. खास करके अपने फेस को मत पोछा करें टॉवल से, क्योंकि टॉवल के अंदर बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो आपके फेस पर आ जाते हैं, उससे फिर आपके चेहरे पर एक्नी जो है ना उसका रुझान काफी ज्यादा बढ़ जाता है. तो अगर आप एक्नी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो कुछ आदतें अपने अंदर भी अपनानी होती है और कुछ अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स का इंतखाब भी करना होता है. तो अच्छे से अपने चेहरे को वॉश कर लीजिए डी स्किन फेस वॉश से, उसके बाद चेहरे को ना सुखा लीजिए अच्छे से. उसके बाद आपने डी स्किन ब्यूटी क्रीम अपने चेहरे पर अप्लाई कर देनी है. उंगलियों की मदद से आराम आराम से प्यार से लगाइए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके चेहरे के अंदर खुद ही जज्ब हो जाएगी. आपने मसाज बिल्कुल भी नहीं करना, बस प्यार से लगाइए, सुकून से लगाइए, और लगाने के बाद जो है ना आपको इतना अच्छा प्यारा सा रिजल्ट मिल जाएगा. दो रातें जब आप लगातार यूज करेंगे तो आपको एहसास होगा कि भाई वाकई इतने अच्छे कमाल के हमें रिजल्ट्स मिल चुके हैं. आपकी रंगत में इजाफा होगा, आपके चेहरे पर जो ये खतरनाक से असरात होते हैं ना, जैसे कि आपके चेहरे पर एक्नी प्रॉब्लम है, एक्नी के निशानात हैं, या फिर आपकी स्किन काफी ज्यादा मुरझा सी चुकी है, तो वो तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी. आपके चेहरे पर एक निखार होगा, एक ग्लो होगा और एक खूबसूरती होगी जो कि आप वाजे देख सकते हैं. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने वाला है. और साथ ही साथ अगर आप अपने भी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराएंगे तो जल्दी से डायल कीजिए 03-12-50-25-907. बुड़ी 312 50 970. ॿियो नंबर आहे 033-27-34. नहीं नहीं थोड़ा गलत हो गया. 033-27-38-4309. बुढ़ी 300 है 73-84-309. ही नंबर तव्हां डायल कंदा पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से. नंबर डायल करण खां फौरन बाद ही तव्हांजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन फेस वॉश अवेलेबल करायो वेंदो. सो जल्दी जल्दी अवेलेबल करायो, पंहिंजे खूबसूरती जो ख़्याल रखो ऐं असांखे ॿुधायो डी स्किन ब्यूटी क्रीम यूज़ कई कोन कई, ऐं न कई आहे त छो न कई आहे, जल्दी कयो बाबा. ऐं असांजी पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर कंदा हलो, ऐं मूंखे ॿुधायो किथां किथां तव्हां असांखे जॉइन कयो आहे. ऐं टॉपिक मूं अव्हां खां पुछियो आहे, मूंखे ॿुधायो उहो कहिड़ो डर आहे जेको औरत खे खूबसूरत बणाए छॾींदो आहे.

अच्छा हिकड़ी ॻाल्हि यादि अची वई, पर छॾे सहाली कोन थी ॿुधायां मां. अच्छा अगरि तव्हां बि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज़ कयो था त मूंखे लाज़मी ॿुधाइजो. यहां पर पैनल की जाने बातें तो आपके मैसेजेस मुझे मिल चुके हैं जी, बहुत ज्यादा वाले, तो उनको भी जरा रीड कर लेते हैं. और सबसे पहले मुझे मैसेज किया है विरियाम अली जतोई.

ओके जी वरियाम लिखते हैं कि सिद्रा है ना प्यारे शो में दिल सा सिक्का सा सलाम था कयूं एंड वीआईपी सफा शो आहे थैंक यू वेरी मच वरियाम और हमारे साथ जी गोट मोहम्मद तैयब थेबू का हबीबुल्ला थेबू कहते तमाम जो शो वेरी नाइस आए सलाम तमाम के वालेकुम अस्सलाम तमाम के प्यारा भा हबीबुल्ला थेबू कहते सॉन्ग बुधराए शमन मिराली जो दो शमन मिराली जो गानो बाबा और ये हमारे साथ है माहीन आज एंजल आई है हम प्रोग्राम सुन रहे हैं टॉपिक अच्छा ये आपने शायद गाना भी लिख दिया है ओके जी ओके माहीन और एंजल आप सबको हम वेलकम कहते हैं आप सब परियों को खुशामदीद डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिएगा और खूबसूरती में जरा इजाफा लाइए ठीक है और हमारे साथ ही चाचा खालिद कहते बेटा सिडो सॉन्ग की रिक्वेस्ट है मां कोशिश क्या थी जो गानों बुधूं था ठीक है और असद महर हमारे साथ विलेज हाजी दिलबर से असद महर भाई आपको वेलकम कहते हैं उनके अलावा अब्दुल्ला महर हमारे साथ हैं जी मीरपुर खासी अब्दुल्ला महर भाई थैंक यू सो मच आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर रहे हैं क्या बात है जी बढ़िया हो गया और जी मायरा हमारा शो सुन रही हैं मायरा को वालेकुम अस्सलाम खुशामदीद डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रही हैं मायरा इस्तेमाल करते रहिए जी डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके लिए हमने इसीलिए तो हर जगह अवेलेबल करा दी है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए और ये मौजूद है वालेकुम अस्सलाम सलामदर अच्छा मुन्नवर अली मुगल भाई हमारे साथ है मीरपुर खास से कहते हैं बहना ना करें भाई ना करें ऐसी तो बात नहीं है वैसे वाकई आपको ऐसा लगता है सच्ची बताए ओके जी मुनवर भाई खुश रहें और बहुत शुक्रिया डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज भी कीजिए आप फेस वॉश का तो कर ही रहे हैं असा ही आयो प्या था चू बाबा वादो हों वाके वाके ऐसे तह सही था चो अच्छा निदड़ी आपने भी टॉपिक का जवाब दे दिया है ठीक है जी ठीक है मीर मुमताज अली जतोई भाई हमें सुन रहे हैं बहुत बढ़िया जी लाड़काना का तमाशा के ज्वाइन करवा मीर मुमताज अली जतोई एस मुमताज जतोई ओके चाचा कहते हजार खान आपकी पसंद पर एआई जनरेटेड सॉन्ग हाँ जी वो सुनना चाहते हैं हम उनको सुनाएंगे रिजवान अली हमारे साथ है कहते बहन कैसी हैं आप नाइस शो है सॉन्ग सुनाए खुदा और मोहब्बत का प्लीज मैं ट्राई करती हूँ आपकी पसंद का गाना सुनेंगे और मुगल उमरानी भाई हमारे साथ है थैंक यू और निदड़ी कहती है कर कर नखरा हाजिर साई नखरा कंदा सी तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो हणंदा आहियूं और महर इरफान सियाज साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ है हजार भाई कहते हैं हजरत अली का कॉल है जो चीज मुश्किल से मिलती है वो देर तक चलती है क्या बात है क्या बात है दिस इज गलत बात भाई निदा मुझे समझ नहीं आया था कि ये सिटी का नाम था ये या इंसान का नाम था आई डोंट नो बस लोग मैसेज कर देते हैं मैं वैसा के वैसा पढ़ देती हूँ इंतजार भाई बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं इकबाल लाशारी हमें मीरपुर खास से सुन रहे हैं आपने टॉपिक का जवाब दिया है ठीक है जी इकबाल भाई आपका बहुत शुक्रिया और अबू हनीफ अलबलोची कहते हैं मुमताज लाशारी का गाना सुनाए मैं कोशिश करती हूँ आपकी पसंद का गाना सुनेंगे और फरवा कहती है आप ही सॉन्ग रिक्वेस्ट है दिल बच बच बच यू गानो बुधो सैया सैया हाजिर हाजिर और नजर मोहम्मद भट्टी हमारे साथ मौजूद है भाई को वेलकम कहते हैं वीआईपी प्रोग्राम थैंक यू डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयव को न मुखे इयो तो बुधायो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज करण वारा मानू हथ त मथे कयो आई कमेंट में एक एक दफा डी स्किन ब्यूटी क्रीम त लिखो

बाबा वठी चो हाने तो देर न कर जल्दी वन बाबा जल्दी वन डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी आ और ताले मरी समारो भाई में सुन रहे हैं ताले मरी भाई तां जो मोहब्बत हुआ तां प्रोग्राम बुधो पया आई पोस्ट के लाइक एंड शेयर करना हेलो अच्छा बतूल मेमन हमारे साथ बतूल बिल्कुल आपका जो कमेंट था ना वो ऊपर चला गया था मेरी जान आपको वेलकम कहते हैं बहुत शुक्रिया आपने दोबारा से कमेंट शेयर कर दिया कहती अस्सलाम वालेकुम सिद्रा आई एम बतूल फ्रॉम खांडो सिटी मटियारी से आपका प्रोग्राम तमाम बेहतरीन है अम्मी के साथ हम आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं आपकी आवाज कोयल की जैसी कल आपको मैंने सॉन्ग कहा था लेकिन आपने नहीं चलाया था उस बात पर हम आपसे बहुत नाराज इतनी छोटी सी बात पर नाराज हो गए वैसे गाना आपका मैंने ढूंढा था मुझे मिला नहीं था तो मैं कोशिश करती हूँ आपको कोई अच्छा सा गाना डेडिकेट कर देंगे ठीक है बतूल मुझसे नाराज मत होइए और अपनी अम्मी को भी बोलिए मुझसे नाराज मत होइए क्योंकि जो लोग मुझसे नाराज हो जाते फिर मुझे मनाना नहीं आता तो फिर मैं क्या करूँ तो खुद ही राजी हो जाइए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए हिदायतुल्ला कहते हैं हाँ जी बिल्कुल आपकी पसंद का गाना सुन लिया अली रज़ा लगारी हमें सुन रहे हैं जी वोट हाजी गुलाम खास के लिए लग झंडो मरी खां कुरबान अली खास के लिए अली रज़ा लगारी तां सगर मौजूद आए थैंक यू

0: पर मां तव्हां खे चवंदा बाबा डीस किन ब्यूटी क्रीम वठी अचु ऐं डीस किन जो फेस वॉश बि वठी अचु अच्छा फहीम कहते वरी भी सागी कार चवाए तो अदा सिंधी में हिक हिक अंग करे बुधाए मां बैराड़ी जो अण पढ़ियल माण्हू आहियां सफ़ा सादो नज़र नथो अचे छा नज़र अञा त कोन आयो बीहो बीहो ब्रेक खां पोइ मोटी अचां थी पोइ तव्हांखे हिकु हिकु करे मां नंबर ॿुधायां थी ठीकु आहे तव्हां नोट करे वठिजो ऐं पोइ तव्हां डी स्किन जो फेस वॉश ऐं डी स्किन जी ब्यूटी क्रीम अवेलेबल कराइजो ठीकु आहे सो हाणे तव्हां हिते वेहो मां हिते शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठां थी पोइ जल्दी मोटी अचां थी तव्हां काॾे न वञिजो हिते वेठा हुजो ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटूं था सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग
1: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by.
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए आर्श ब्यूटी क्रीम एलोवेरा और एवोका स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो आर्श ब्यूटी क्रीम
1: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by.
2: अगर

0: जिए मीरपुर खास FM 88 मीरपुर खास की आवाज।
1: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक।
2: तारीख 26 सितंबर 2026 छंछर जे दी है। सुबह जो 9 वगे खां शाम 5 वगे ताई लगी रहे शेख जैद अस्पताल लाहौर ऐं पाकिस्तान जे आला तालीमी इदारन मां तालीम याफ्ता मीरपुर खास डिवीजन जो वाहिद चेस्ट फिजिशियन शमल खत्री MBBS DTCD MCPS पल्मोनोलॉजी TB कोरोना नमूनिया दमो पुरानी खंग बलगम में रत जो अचण नज़लो जुकाम फिफड़न में ॼारो हवा या पानी जो भरजन या कैंसर मोटापे जे करे साहो सुमन में तकलीफ ऐं सिगरेट नोशी वारे मरीजन जी मुफ्त चकास कंदो ऐं दवाऊं पिण मुफ्त दिनियूं वेंदियूं। नोट, डॉक्टर साहब 28 सितंबर 2026 खां OPD पिण शुरू कंदा। एड्रेस माई डायग्नोस्टिक क्लिनिक वेझो माई लैब न्यू टाउन मीरपुर खास। राबते लाइ 03242449327।
3: सोना सिर्फ जेवर नहीं हर घर की अमानत होती है, इसीलिए बैंक इस्लामी लाया साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752644 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत और जवाबित लागू हैं।
4: जे पंजे शहर मीरपुर खास में डॉक्टर मुसर्रत अब्बासी एंडे में मनी जी रुकावट जिगर जी चर्बी कारी अई फिकी साई वात अई पेट मा रत जो अचन कब्ज बवासीर वजन जो वधी वणन कहड़न तमाम बीमारियन वारे मरीजन जो मुआइनो अई इलाज कंदी आहे। OPD टाइम सुमर अई खमीस सुबह जो 10 वगे खां मंझंद 2 वगे ताई अई अंगारो अई अरबा मंझंद 3 वगे खां शाम 6 वगे ताई। एड्रेस रहमत मैदा वो जिगर केयर वेजो आगा खान लेबोरेटरी अली मेडिकेयर सेंटर PM कॉलोनी मीरपुर खास। वधिक मालूमात लाए एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद इरफान अब्बासी 03103844883।
5: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ 2 मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है। और बदकिचों को पोलियो से बचाव के 2 कतरे लाजमी पिलवाएं।

0: This program is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है. सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है. अब जिम्मेदारी हम सब की है. हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं. पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी.
3: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार. सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
4: अजरक के रंगों से रंगी,
5: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
4: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
5: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज.
6: कोक स्टूडियो सीजन 14.

बि जहिड़ा सिंगार कया अथई सवा कुंवार लॻंदी आई तव्हांखे कुंवार लॻण जी ज़रूरत न आहे पर बसि तव्हां हिननि सिंगारनि खां थोरो पाण खे बचाइण चाहियो था छो त मेकअप जॾहिं तव्हां पंहिंजे चहिरे ते अप्लाई कंदा न मेकअप जा खोड़ सारा साइड इफेक्ट तव्हांखे मिली सघनि था पर उन्हनि चीज़ुनि खे अगरि तव्हां साइड रखो तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो साईं वाह वाह थी वेंदी सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो डी स्किन जो फेस वॉश बि तव्हांखे मिले पियो तव्हां क़रीबी जनरल स्टोर्स ते वञो या नथा मिलनि त पोइ तव्हां जल्दी जल्दी नंबर ते राबितो करे सघो था ऐं नंबर जेके पूरे प्रोग्राम में तव्हांखे ॿुधाईंदी आहियां ऐं जेको मां चई वियसि त बाबा मोटी अचां ब्रेक खां पोइ त तव्हांखे नंबर हिकु हिकु करे ॿुधायां थी सो तव्हांखे नंबर हिकु हिकु करे ॿुधायांव थी तव्हां नोट करे वठो ठीकु आहे ओगरी सो पहिरियों नंबर आहे ॿुड़ी टे हिकु ॿ पंज ॿुड़ी ॿ पंज नव ॿुड़ी सत ऐं ॿियो नंबर आहे ॿुड़ी टे टे ॿ सत टे अठ चार टे ॿुड़ी ऐं नव साउंड सो फनी

गानो साईं भलो हो गानो वणी वयो मुखे बुधाए तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो या कोन डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे इस्तेमाल को फौरन बाद तमा जे चेहरे ते एडी खूबसूरती अची वेंदी तमा खा मानो वरी वरी पुछना बुधायो ता सही डी खूबसूरती काडा आंदी तव आई ता उनन के बुधायो बाबा ही कमाल आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम नथी मिले तो ता नंबर से राबतो करे वेठो आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम पाने करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए वेठो ठीक हो गया अच्छा ये फायजा अली की आवाज में गाना है जो की मेरा फेवरेट है इसीलिए मैंने लगा लिया वरना शायद नहीं लगाते डिसो डिसो मां के नहीं सेल्फिश आया साथ है ये फजली मौजूद है कहती हैं अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम हैप्पी मंडे आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आज सिस्टर सिद्रा मुस्कान कैसी हो डियर स्वीटी मैं बहुत अच्छी तुम बताओ कैसी हो मजे में और दर्दे दिल हमारा शो सुन रही हैं थैंक यू वेरी मच दर्दे दिल और मुनव्वर भाई बस कर जाए महबूब अली मोरो सिटी से हमें सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम कहते हैं FM रेडियो की कून से खुश रहो हमेशा के लिए आमीन आमीन आमीन और कहते हैं कुंज जलाल का सॉन्ग तो प्ले करो प्लीज थोड़ो तां के चढ़ में लेट थी भैया है

चुके रहियो बाबा। सिराज में जतोई भाई में सुन रहे हैं सऊदी अरबिया से, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं भाई जान, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ। दर्दे दिल वालेकुम अस्सलाम स्वीटी, आपको भी वेलकम हो गया। हजार भाई कहते हैं गलत बात नहीं सिस्टर, सच्ची बात है। कौन सी बात है, किसकी बात है, कैसी बात है? अच्छा मुख्तार लाशारी भाई आपने टॉपिक का जवाब दिया है, ठीक है जी, थैंक यू। दर्दे दिल कहती है मेरा कमेंट, आपका कमेंट जी बिल्कुल हो गया। निदली कहती है डी स्किन ब्यूटी क्रीम, डी स्किन ब्यूटी क्रीम, डी स्किन ब्यूटी क्रीम, डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन ब्यूटी क्रीम। ओ ये जियो करे।

पे गा रहा है कैसी था बचन दे दिल सही गाला सही गाला आई तहा पे केस ताई बचना था सबनी के पकड़ी पकड़ी दी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज कराई नम दिस जो भी डे स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल जें जें ना कयो बाबा करे वठो अन्या टाइम अथव आई डे स्किन ब्यूटी क्रीम ताने करीबी जनरल स्टोर से मिली रही है सो वन्यो ही वठी अचो

फरवा की पसंद अच्छी है, अच्छी है. सुठा सुठा गाना फरमाइश कंदी आ छोकरी. वरियाम कहते हैं सदरा शाम वाले प्रोग्राम में सॉन्ग प्ले कंदा. हाजिर हाजिर बिल्कुल. यो प्रोग्राम गानो मतलब तांजला शाम वाले प्रोग्राम में हलाई छड़ीना से ठीक है छाया कंदो थोड़ो हो जो. अच्छा ये हमने गाना लगाया है निदा के चॉइस के ऊपर, सो हम सुनेंगे. अच्छा ये आपके कमेंट्स भी बड़ी जमा हो चुके हैं तो अच्छा ये तो रीमेक्स में चल गया है. चलो इसको छोड़कर हम जो है ना वो ओरिजिनल वाला सुनेंगे.

क्या बात है, टी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे ही नहीं, मुझे जल्दी से बताइए, क्योंकि टी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तभी तो खूबसूरत होंगे। तो टी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करने वाले लोगों से पूछिए जरा कि टी स्किन ब्यूटी क्रीम उनको कितना खूबसूरत बना चुकी है। तो अब आपकी बारी है, जाइए टी स्किन ब्यूटी क्रीम को परचेज कीजिए ताकि आप भी खूबसूरत हो सके। अब्दुल गफार भाई हमें सुन रहे हैं, खुश आमदीद, प्यारे भाई को वेलकम कहते हैं, बतूल बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ। रमजान भाई वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं, ठीक ठाक है, मजे में हैं। अच्छा मोहम्मद जमान भाई आ चुके हैं, बहुत शुक्रिया। सिकंदर सालार सिकंदर हमारे साथ हैं, मुमताज वाले का गाना हम सुन चुके हैं पहले से ही, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। और सी हैं हमारे साथ, एसन कहते हैं कि सबसे पहले वो बात बताओ हम नहीं छोड़ेंगे आपको, कौन सी बात थी, मैं तो भूल ही गई, पता नहीं कौन सी बात है। उस टाइम कहते ना

अच्छा भाई इरम की शादी है, इरम को शादी वाला गाना डेडिकेट कर देंगे, ठीक है? बाकी शादी की बिरयानी खाने की कोई उम्मीद नहीं। तो बस इरम को बोलिएगा डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपको दो रातों में इतना गोरा चट्टा प्यारा बना देगी कि लोग आपसे पूछेंगे कि भाई क्या लगाया है, क्या लगाया है बताएं। तो उन्हें बताइएगा जनाब ये डी स्किन ब्यूटी क्रीम का कमाल है, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी, ये मेडिकेटेड फार्मूला है और 2-in-1 फार्मूला है, तो सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। खूबसूरती का ख्याल रखिए और हमेशा के लिए खूबसूरत रहिए, क्योंकि ये आप डिजर्व करते हैं। जी दिमागी दही बनाने के बाद एक बहुत ही सुंदर सा गाना आप लोगों के समातों की नजर, इस गाने की फरमाइश हमें माहीन ने कर दी थी।

बस फिर अब्दुल्ला आप भी डे स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए और डी स्किन का फेस वॉश ऑलरेडी जो लोग यूज कर रहे हैं या फिर जो लोग डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा रहे लेकिन उनको डी स्किन का फेस वॉश अभी तक नहीं मिला तो आप भी अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ साथ डी स्किन का फेस वॉश भी अवेलेबल कराते रहिए और खूबसूरती की दुनिया में कदम रखिए. हाँ जी अच्छा मोहसिन रजा एंड राजा लाशारी सुन रही है हमारा प्रोग्राम. आपका प्रोग्राम वीआईपी है. वो डायलॉग सुनाओ. सुनो जाना मैं बोलने ही वाली थी क्योंकि इस गाने के साथ मैंने एक शायरी रखी थी. व्हाट अ कोइंसिडेंस. मंजूर अली खास के लिए हमें सुन रहे हैं झंडो मरी से. भाई आपका भी बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ. तो मेरे पास एक शायरी है वो जरा हम पढ़ लेते हैं.

सुनो जाना, सुनो जाना, तुम मेरी धड़कन हो, तुम मेरी धड़कन हो, कोई तुम्हें महसूस करे तो क्यों, तुम मेरी धड़कन हो, कोई तुम्हें महसूस करे तो क्यों, तुम मेरी नजर का सुकून हो, कोई तुम्हें देखे तो क्यों, तुम मेरी आदत हो और कोई ये आदत अपनाए तो आखिर क्यों, तुम पे जो हक मेरा है वो किसी और का हो तो क्यों, फिर कैसे ना कहूँ, तुम मेरे लिए सबसे खास हो, तुम मेरी धड़कन हो, कोई तुम्हें महसूस करे तो आखिर क्यों,

जी बिल्कुल हिदायतुल्लाह, फिर मैं ऐसा करती हूँ, मैं जरा ये आरजे वारजे छोड़कर सिंगिंग की दुनिया में आ जाती हूँ। हाँ जी, आपके कानों को खराब करने की जो है ना वो मैंने जरा कसम खा रखी है तो। हाँ जी, समझ गए होंगे। और इसी के साथ हमारे जाने का वक्त भी बड़ा करीब आ चुका है। फरवा, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रही हैं। थैंक यू। It's 3 p.m.

0: अमेरिका नओं हमलो कयो त जवाब पहिरें खां वधीक ख़तरनाक हथियारनि सां ॾिनो वेंदो। ईरानी फ़ौज ख़बरदार करे छॾियो। पासदारनि इनकलाब जे तर्जुबान हुसैन चयो आहे त अमेरिका नओं हमलो कयो त ईरान बि नवां हथियार इस्तेमालु कंदो। अमेरिकी अॾनि सां गॾु अहिड़नि हंधनि खे बि निशानो बणाईंदासीं जिन खे अञा ताईं
1: निशानो। तो जिस तरह पिछली दफा बात हुई थी कि कोई ऐसी चीज नहीं है जहां पे इस दफा हम कमी छोड़ेंगे। लेकिन अगर किसी भी सूरत में वो करेंगे तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर मौजूद है और उसके ऊपर मनवान अमल हुकूमत कराएगी। उसके अलावा हुकूमत का अपना फर्ज भी यही है जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा है, उसमें किसी किस्म की कोई कमी पेशी नहीं होगी। मैं एक चीज कहूंगा, खुदारा इस सारी अपनी सियासत से निकलें और आप जिस अप्रोच के ऊपर जा रहे हैं उससे अपना और अपने लोगों का नुकसान ना करें।
2: वंस फॉर ऑल कोई ना कोई चीज करेंगे, बार बार अफोर्ड नहीं कर सकते।
0: इस्लामाबाद ते कंहिंखे बि चढ़ाई करण न ॾींदासीं। हिन भेरे वंस फॉर आल थींदो। केवीके जूं हालतूं सभिनी जे साम्हूं आहिनि। पीटीआई वटि अञा बि वक़्तु आहे बंद घिटी तरफ़ न वञे। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी ख़बरदार करे छॾियो। लाहौर मीडिया सां ॻाल्हाईंदे मोहसिन नक़वी चयो आहे त लांग मार थियो त हाईकोर्ट जे फ़ैसिले ते रूह मूजिब अमल कयो वेंदो। हिन भेरे ईअं न थींदो। पीटीआई वारा अचनि ऐं मुल्क 10 या 20 ॾींहं बंदि थी वञे। हिन भेरे मुस्तक़िल हल कढियो वेंदो। अफ़गानिस्तान सां नागापा दहशतगर्दनि खे रोकण ताईं मामूल ते न ईंदा। आलमी मार्केट जे हिसाब सां तेल महांगो थियो आहे। हालतूं बरक़रार रहियूं त 1000 रुपए में बि लीटर पेट्रोल न मिलंदो।
3: तकरीबन हर बंदा किसी न किसी तरीके से अपना रोल प्ले कर रहा है और आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला, मैं तो बड़ा पूरी उम्मीद हूँ कि अल्लाह ताला ने चाहा तो ये इंशाल्लाह बड़ा पूरी उम्मीद इस बात में कि सुबह वाली जो तहरीक है वो ठंडी है या गर्म है, मेरा ख्याल है बहुत तेजी से चल रही है।
0: घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी नवनि सूबनि वारी होद ते क़ाइम। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे मोहसिन नक़वी चयो आहे त नवनि सूबनि वारो मामिलो असांजी सोच खां वधीक तेज़ीअ सां अॻिते वधी रहियो आहे। अलाह चाहियो ऐं आवाम जी ख़्वाहिश हूंदी त नवां सूबा ज़रूरु ठहंदा। सूबनि वारो मामिलो थधे या गरम खां घणो अॻिते आहे। वॾे वज़ीर सिंध में पोलियो मुहिम जो इफ़्तिताह करे छॾियो। अॼु खां शुरू थियल पोलियो मुहिम 27 सेप्टेम्बर ताईं जारी रहंदी। 25 लख खां वधीक ॿारनि खे पोलियो खां बचाव वारा फोड़ा पीआरिया वेंदा। इफ़्तिताही तक़रीब खे ख़िताब कंदे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह चयो आहे त समूरी दुनिया जीअं पाकिस्तान मां बि पोलियो ख़तमु कयो वेंदो। पोलियो मुहिम में कोताही कंदड़ ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई कई वेंदी। आलम सगोरा पोलियो मुहिम कामयाब करण लाइ किरदार अदा कंदा। कराची में मंशियात विकिरो कंदड़नि मंशियात छॾे ॾिनी। पाणी विकिरो करणु शुरू कयो आहे। हीरोइन विकिरो कंदड़ पकड़िजी पवनि था। पाणी विकिरो कंदड़ सेनेटर थी वञनि था। कराची में तकरीब खे ख़िताब कंदे वफ़ाक़ी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल चयो त जंहिंजे हथ में पाणी फराहम करण आहे उहे ई टैंकर हलाए रहिया आहिनि। हाणे बि ॿारनि खे कुतनि जे चक खां नथा बचाए सघूं। जिन माण्हुनि जो कारोबार अरबे रुपयनि जो आहे उहे माण्हुनि खे पाणी कीअं फराहम कंदा? मौजूदा निज़ाम तहत पाकिस्तान नथो हली सघे। पेट्रोलियम डे ख़िलाफ़ जमायत इस्लामी जो कराचीअ खां निकितल ट्रेन मार्च सखर पहुची वियो। मुख़्तलिफ़ शहरनि मां गुज़रण दौरान ट्रेन मार्च जो शानदार आदर भाव कयो वियो। सखर में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे जमायत इस्लामी जे अमीर हाफिज़ नईम चयो आहे त मार्च जो पहिरियों मरहलो कामयाबीअ सां मुकमिल कयो आहे। हुकुमराननि खे लीड वापसि वठणी पवंदी।

0: चारजणा कतल भोटकी भरिसां भाटी कार इल्ज़ाम हेठि फुफी खे क़तल करे छॾियो। मोहम्मदपुर में जवाबदार वकार माची 16 सालनि जे फुफी हफीज़ा खे कुआड़ियुनि जा वार करे क़तल कयो। शिकारपुर में कॉलेज रोड ते हथियारबंद नौजवान समर अली जिस्काणीअ खे क़तल कयो। आया संजराणी ज़ख़्मी। घोट विस्तरो में ॿारनि जी ॻाल्हि तां सोलंगी बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में जहिड़ो लठियूं लॻण सबबि नौजवान जलाल सोलंगी क़तल। नौशेरो फिरोज़ में फुलजी स्टेशन वेझो घोट दरिया खान में जवाबदार ज़ाल खे क़तल करण बाद पाण ते बि फायर करे छॾियो। जवाबदार शफ़ीक राजभर ज़ाल नवाबदादीअ खे क़तल करण बाद पाण ते बि फायर करे छॾियो। ज़ख़्मी हालत में इस्पताल मुंतकिल। सिंध हाई कोर्ट में सर्किट बेंच सखर में घोटकी जी फहमीदा पिताफ़ी केस जी ॿुधणी आहे। जी सिंध ऐं घरू सेक्रेटरी पेश न थिया। अदालत पुलिस खे नारी जी बाज़ियाबीअ लाइ ॿिनि हफ़्तनि जी मोहलत ॾेई छॾी। ॿुधणी दौरान एडिशनल आई जी शर्जील, DIG सखर नासिर आफ़्ताब पठाण, SSP घोटकी अनवर सखर अहमद ऐं ॿिया पेश थिया। एडिशनल आई जी रिपोर्ट जमा कराईंदे चयो त नारीअ खे बाज़ियाब कराइण लाइ कोशिशूं जारी आहिनि। बासर सरदार खां कमेटी जोड़ी पुछा गाछा कई वई आहे। कराची जे वापारी मीर रज़ा जे मुलाज़िम जा पुलिस ते संगीन इल्ज़ाम। कमीशन मीर रज़ा जे दोस्त मुलाज़िम बिजनेस पार्टनर्स ऐं DAG हेल्थ जा बयान कलम बंदि करे वरिता। मीर रज़ा जे दोस्त कमीशन खे ॿुधायो त मीर रज़ा सां कारोबार बाबति 30 लखनि जी ज़रूरत ते ॻाल्हियूं थियूं हुयूं। मीर रज़ा जे मुलाज़िम काज़िम अदालती कमीशन खे ॿुधायो त पुलिस मीर रज़ा जे घर वारनि सां न मिलण ऐं एहतजाज में शामिल न थियण जो चयो। पुलिस कागज़ी कार्रवाई खां सवाइ मूंखां फोन वरिती। कंदकोट भरिसां हथियारबंदनि जी फायरिंग। रिटायर्ड हेड कॉन्स्टेबल ज़फ़र संजराणी क़तल। पुलिस मूजिबि साल पहिरीं इंडस हाईवे मुक़ाबले में भंगवार बिरादरी जा 3 ॾोहारी मारिजी विया हुआ। पलांद में भंगवार बिरादरी जे हथियारबंदनि रिटायर्ड पुलिस अहलकार ज़फ़र संजराणीअ खे क़तल कयो आहे। जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वेंदो। कराची यूनिवर्सिटी जे प्रोफेसर आरिफ साकीअ ते तशद्दुद ऐं धमकियुनि वारो मामिलो हल थी वियो। जवाबदार कुनैन शाह ऐं प्रोफेसर आरिफ साकी विच में ठाह थी वियो। वकील जो चवणु आहे त कुनैन शाह जी ज़मानत वारी दरख़्वास्त प्रोफेसर आरिफ साकी पारां NOC जमा कराई वई। ॿिन्ही धुरियुनि पारां सुलहनामो बि जमा करायो वेंदो। हैदराबाद में वासा मुलाज़िमनि जो 18 महीननि खां पघारूं ऐं पेंशन न मिलण ख़िलाफ़ एहतजाज। मुज़ाहिरीन चयो त एहतजाज बाद 20 महीननि बदिरां रुगो 2 महीननि जूं पघारूं ॾिनियूं वयूं आहिनि। CEO ऐं ॿिया आफ़िसर हर महीने लखे रुपया पघारूं ऐं मराइतूं वठी रहिया आहिनि, पर असांखे हक़ नथो मिले। पघारूं ऐं पेंशन जारी करे परेशानी ख़तमु कई वञे। खान सैदाबाद जे गोट नगर खान बिरोही वासी पी पुट नूरियाबाद भरिसां गुम वारसनि खे अगवा जो शक। रेवेन्यू मुलाज़िम एजाज बिरोही ऐं संदसि पुट अशफाक बिरोही कराची खां वापसि ईंदे नूरियाबाद वटां गुम थिया। वारसनि मौजूदु मोबाइल सां आख़िरी भेरो नूरियाबाद वटि राब्तो थियो। DIG हैदराबाद नोटिस वठे। मेहड़ में 20 ॾींहं अॻु क़तल कयल नौजवान जे वारसनि जो पाक किताब खणी एहतजाज। मक़बूल सजाद चांडो जे वारसनि 3 किलोमीटर पैदल मार्च करे प्रेस क्लब अॻियां एहतजाज कयो। वारसनि चयो त ॻोठु हासिल कोसो में जवाबदारनि मामूली ॻाल्हि सां नौजवान खे क़तल कयो। पुलिस जवाबदारनि खे गिरफ़्तार न करे रही आहे। खैरपुर में मैट्रिक जी शागिर्दियाणीअ साम्हूं ॿिनि अलॻि अलॻि वीडियो बि रिकॉर्ड कई वई। गाड़ी मोरी वासण शागिर्दियाणी जो एहतजाज। जवाबदारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई जो मुतालबो। मुतासिर नारी चयो त फ़र्ज़ जुणे जो हथियारनि जे ज़ोर ते लॻल जो निशानो बणाए वीडियो रिकॉर्ड कई आहे। पुलिस बाज़ार जे वंगारो बणियल आहे। इंसाफ़ न मिलियो त आपघात करे छॾींदसि। टंडो आदम में गटरनि जो गंदो पाणी शाख में छोड़ करण ख़िलाफ़ आबादगारनि जो एहतजाज। आबादगारनि चयो त मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि जे गटरनि जो गंदो पाणी माइनर में छोड़ कयो पियो वञे। ज़मीनूं सुकी वियूं आहिनि। ॻोठाणा ज़हरीलो पाणी वापराइण सबबि बीमारियुनि में मुबतला थी विया आहिनि। माइनर में गंदे पाणीअ जो नेकाल बंदि कयो वञे।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाकी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में टे ज़बरदस्त हवा। रॉयल इनवर्टर फैंस साथ ज़िंदगी भर का।
2: दुनिया भर में सबसे ज्यादा बिकने।
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ 2 मुल्क रहते हैं जहाँ ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन 2 ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है। हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के 2 कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
5: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
6: कोक स्टूडियो सीजन 14।

0: tonight.
1: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: Coke Studio, Season 14.

0: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
1: सुनते रहो जी एफ एम 90.8।

0: मैं उसी का इंतजार कर रही हूँ।
1: थैंक गॉड शी इज हियर। सिस्टर मैं आपका 2 घंटे से इंतजार कर रही हूँ। ओके जान आई एम ऑफ नाउ एंड आई विल सेंड यू सम फूड। सिस्टर इनका ख्याल रखिएगा। हाँ आई एम जस्ट कमिंग।
2: आपकी ड्रिप चेंज होने वाली है, मेडिसिन लिए आपने?
3: जी कल रात से बड़ी बेचैनी हो रही है। I can't seem to sleep. मुझे लगता है दवाइयों का साइड इफेक्ट है।
2: कभी कभी बिला वजह बेचैनी हो जाती है।

0: बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: तेजी से आगे बढ़ रहा है वो मेरा ख्याल है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, और जिस तरह प्रैक्टिकली पब्लिक साथ आ रही है, और चाहे वो चैम्बर्स हैं, चाहे वो ट्रेडर्स हैं, चाहे चैम्बर्स हैं, चाहे ट्रेडर्स हैं, चाहे किसान हैं, तकरीबन हर बंदा किसी न किसी तरीके से अपना रोल प्ले कर रहा है। और आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला, मैं तो बड़ा पूरी उम्मीद हूँ कि अल्लाह ताला ने चाहा तो ये इंशाल्लाह बड़ा पूरी उम्मीद हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने चाहा और अगर पब्लिक की मर्जी हुई तो सूबे जरूर बनेंगे। और इस बात में कि सूबों वाली जो तहरीक है वो ठंडी है या गर्म है, मेरा ख्याल है बहुत तेजी से चल रही है।
3: घरो वजीर मोहसिन नकवी नवन सूबन वारो होड़ ते कायम लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे मोहसिन नकवी चयो आहे त नवन सूबन वारो मामलो असांजी सोच खां वधीक तेजी सां अॻिते वधी रहियो आहे। अला चाहियो ऐं अवाम जी ख़्वाहिश हूंदी त नवा सूबा ज़रूर ठहंदा, सूबन वारो मामलो थदे या गरम खां घणो अॻिते आहे। वॾे वज़ीर सिंध में पोलियो मुहिम जो इफ़्तिताह करे छॾियो। अॼु खां शुरू थियल पोलियो मुहिम 27 सितंबर ताईं जारी रहंदी। 25 लख खां वधीक ॿारनि खे पोलियो खां बचाव वारा फुड़ा पीआरिया वेंदा। इफ़्तिताही तकरीब खे ख़िताब कंदे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो आहे त समूरी दुनिया जीअं पाकिस्तान मां बि पोलियो मुहिम ख़तमु कयो वेंदो। पोलियो मुहिम में कोताही कंदड़ ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई कई वेंदी। आलम सगोरा पोलियो मुहिम कामयाब करण लाइ किरदार अदा कनि। मनशात विकरो कंदड़ मनशात छॾे पाणी विकरो करणु शुरू कयो आहे। हीरोइन विकिणींदड़ पकड़िजी पवनि था, पाणी विकरो कंदड़ सेनेटर बणिजी वञनि था। कराची में तकरीब खे ख़िताब कंदे वफ़ाक़ी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल चयो आहे त जंहिंजे हथ में पाणी फराहम करणु आहे उहे ई टैंकर हलाए रहिया आहिनि। हाणे बि ॿारनि खे कुतनि जे चक खां नथा बचाए सघूं। जन माण्हुनि जो कारोबार अरबे रुपयनि जो आहे, उहे माण्हू पाणी कीअं फराहम कंदा? मौजूदा निज़ाम तहत पाकिस्तान नथो हली सघे। पेट्रोलियम लेवी ख़िलाफ़ जमायत इस्लामी जो कराची खां निकितल ट्रेन मार्च सखर पहुची वियो। मुख़्तलिफ़ शहरनि मां गुज़रण दौरान ट्रेन मार्च जो शानदार आदर भाव। सखर में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे जमायत इस्लामी जे अमीर हाफिज़ नईम चयो आहे त मार्च जो पहिरियों मरहलो कामयाबी सां मुकमल कयो आहे। हुकुमराननि खे लेवी वापसि वठणी पवंदी। बलोचिस्तान जे पंजगोर वारे इलाइक़े में फोर्सिस जो ऑपरेशन हिंदुस्तानी फितने जा 4 दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रिए मौजूदु पंजगोर जे ॿिनि इलाइक़नि में ॻुझी इतलाउ ते ऑपरेशन कयो वियो। फोर्सिस जे ऑपरेशन दौरान हिंदुस्तानी फितने जे 4 दहशतगर्दनि खे जहनू बेड़ो कयो वियो, हथियारत कया विया। सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में ॿिनि औरतनि समेत 4 ॼणा क़तल। घोटकी भरिसां भाए टे कारे इल्ज़ाम हेठि पुफी खे क़तल करे छॾियो। मोहम्मदपुर में जवाबदार वकार माची 16 सालनि जी पुफी हफ़ीज़ा खे कुआड़ियुनि जा वार करे क़तल कयो। शिकारपुर में कॉलेज रोड ते हथियारबंद नौजवान समर अली जिस्काणी खे क़तल कयो। एजाज़ संजराणी ज़ख़्मी। बंगो बहिण भरिसां घोट विस्तड़ो में ॿारनि जी ॻाल्हि सां सोलंगी बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में जहिड़ो लठी लॻण सबबु नौजवान जलाल सोलंगी क़तल। नौशेरो फिरोज में फुलजी स्टेशन वेझो घोट दरिया खान में जवाबदार ज़ाल खे क़तल करण बाद पाण ते फायर करे छॾियो। जवाबदार शफ़ीक राजपर ज़ाल नवाबज़ादीअ खे क़तल करण बाद पाण ते बि फायर करे छॾियो। ज़ख़्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। सिंध हाईकोर्ट सर्किट बेंच सखर में घोटकी जी फर्मिंदा पिताफ़ी केस जी ॿुधणी थी आहे। जी सिंध ऐं घरू सेक्रेटरी पेश न थिया। अदालत पुलिस खे नारी जी बाज़ियाब लाइ ॿिनि हफ़्तनि जी मोहलत ॾेई छॾी। ॿुधणी दौरान एडिशनल IG DIG सखर नासिर आफ़्ताब पठाण, SSP घोटकी, ASP सखर ऐं ॿिया पेश थिया। एडिशनल IG रिपोर्ट जमा कराईंदे चयो त नारी खे बाज़ियाब कराइण लाइ कोशिशूं जारी आहिनि। बासक सरदार खां कमेटी जोड़ी पुछा गाछा कई वई आहे। वापारी मीर रज़ा जे मुलाज़िम जा पुलिस ते संगीन इल्ज़ाम। कमीशन मीर रज़ा जे दोस्त मुलाज़िम बिज़नेस पार्टनर्स ऐं DG हेल्थ जा बयान कलम बंदि करे वरिता। मीर रज़ा जे दोस्त कमीशन खे ॿुधायो त मीर रज़ा सां कारोबार बाबति 20 लखनि जी ज़रूरत ते ॻाल्हियूं थी हुयूं। मीर रज़ा जे मुलाज़िम काज़िम अदालती कमीशन खे ॿुधायो त पुलिस मीर रज़ा जे घर वारनि सां न मिलण ऐं एहतजाज में शामिल न थियण जो चयो। पुलिस कागज़ी कार्रवाई खां सवाइ मूंखां फोन वरिती। कंदकोट भरिसां हथियारबंदनि जी फायरिंग। रिटायर्ड हेड कांस्टेबल ज़फ़र सिंजराणी क़तल। पुलिस
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया ॾांहुं वधनि था, पर पोलियो इन्हनि कदमनि खे रोके बि सघे थो। इन्हीअ करे जॾहिं बि पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करनि जी दस्तक थिए त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था।

0: पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
1: सिंध के माथे का झूमर
2: DFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

Sem

0: तू ना मेरा हेटर, तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: 45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: आप सुन रहे हैं
5: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

रही हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: ख्याल है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, और जिस तरह प्रैक्टिकली पब्लिक साथ आ रही है, और चाहे वो चैम्बर्स हैं, चाहे वो ट्रेडर्स हैं, चाहे चैम्बर्स हैं, चाहे ट्रेडर्स हैं, चाहे किसान हैं, तकरीबन हर बंदा किसी न किसी तरीके से अपना रोल प्ले कर रहा है। और आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला, मैं तो बड़ा पूरी उम्मीद हूँ कि अल्लाह ताला ने चाह तो ये इंशाल्लाह बड़ा पूरी उम्मीद हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने चाह और अगर पब्लिक की मर्जी हुई तो सूबे जरूर बनेंगे। और इस बात में कि सूबों वाली जो तहरीक है वो ठंडी है या गर्म है, मेरा ख्याल है बहुत तेजी से चल रही है।
1: घरू वजीर मोहसिन नकवी नवन सूबन वारो होड ते कायम लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे मोहसिन नकवी चयो आहे त नवन सूबन वारो मामलो असांजी सोच खां वधीक तेज़ी सां अॻिते वधी रहियो आहे। अलाह चाहियो ऐं अवाम जी ख़्वाहिश हूंदी त नवां सूबा ज़रूरु ठहंदा। सूबन वारो मामलो थदे या गरम खां घणो अॻिते आहे। वरे वज़ीर सिंध में पोलियो मुहिम जो इफ़्तिताह करे छॾियो। अॼु खां शुरू थियल पोलियो मुहिम 27 सेप्टेम्बर ताईं जारी रहंदी। 25 लख खां वधीक ॿारनि खे पोलियो खां बचाव वारा फुड़ा पीआरिया वेंदा। इफ़्तिताही तकरीब खे ख़िताब कंदे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो आहे त समूरी दुनिया जीअं पाकिस्तान मां बि पोलियो मुहिम ख़तमु कयो वेंदो। पोलियो मुहिम में कोताही कंदड़ ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई कई वेंदी। आलम सगोरा पोलियो मुहिम कामयाब करण लाइ किरदार अदा कनि। मंशात विकरो कंदड़ मंशात छॾे पाणी विकरो करणु शुरू कयो आहे। हीरोइन विकणींदड़ पकड़िजी पवनि था। पाणी विकरो कंदड़ सेनेटर बणिजी वञनि था। कराची में तकरीब खे ख़िताब कंदे वफ़ाक़ी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल चयो आहे त जंहिंजे हथ में पाणी फराहम करणु आहे उहे ई टैंकर हलाए रहिया आहिनि। हाणे बि ॿारनि खे कुतनि जे चक खां नथा बचाए सघूं। जन माण्हुनि जो कारोबार अरबे रुपियनि जो आहे, उहे माण्हू पाणी कीअं फराहम कंदा? मौजूदा निज़ाम तहत पाकिस्तान नथो हली सघे। पेट्रोलियम लेवी खिलाफ़ जमायत इस्लामी जो कराची खां निकितल ट्रेन मार्च सखर पहुची वियो। मुख़्तलिफ़ शहरनि मां गुज़रण दौरान ट्रेन मार्च जो शानदार आदर भाव। सखर में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे जमायत इस्लामी जे अमीर हाफिज़ नईम चयो आहे त मार्च जो पहिरियों मरहलो कामयाबी सां मुकमल कयो आहे। हुकुमराननि खे लेवी वापसि वठणी पवंदी। बलोचिस्तान जे पंजगोर वारे इलाइक़े में फोर्सिस जो ऑपरेशन हिंदुस्तानी फितने जा 4 दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रिए मौजूद पंजगोर जे ॿिनि इलाइक़नि में ॻुझी इतलाउ ते ऑपरेशन कयो वियो। फोर्सिस जे ऑपरेशन दौरान हिंदुस्तानी फितने जे 4 दहशतगर्दनि खे जहनो बेड़ो कयो वियो, हथियारत कया विया। सिंध जे मुख्य इलाइक़े में ॿिनि औरतनि समेत 4 ॼणा क़तल। घोटकी भरिसां भाए 3 कारे इल्ज़ाम हेठि पुफी खे क़तल करे छॾियो। मोहम्मदपुर में जवाबदार वकार माची 16 सालनि जी पुफी हफीज़ा खे कुआड़ियुनि जा वार करे क़तल कयो। शिकारपुर में कॉलेज रोड ते हथियारबंदनि नौजवान समर अली जिस्कानी खे क़तल कयो। एजाज़ संजराणी ज़ख़्मी। भंगो बहिण भरिसां घोट विस्तड़ो में ॿारनि जी ॻाल्हि सां सोलंगी बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में जहिड़ो लठियूं लॻण सबबि नौजवान जलाल सोलंगी क़तल। नौशेरो फिरोज़ में फौजी स्टेशन वेझो घोट दरिया खान में जवाबदार ज़ाल खे क़तल करण बाद पाण ते फायर करे छॾियो। जवाबदार शफ़ीक राजपर ज़ाल नवाबज़ादीअ खे क़तल करण बाद पाण ते बि फायर करे छॾियो। ज़ख़्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। सिंध हाईकोर्ट सर्किट बेंच सखर में घोटकी जी फहिमदा कताफ़ी केस जी ॿुधणी थी आहे। जी सिंध ऐं गरू से
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: This program is brought to you by
4: Bank Islam ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
5: हर माशूम वरकोटी वरकोटी कदमुना द यो नवी दुनिया पलोर रवानवी। खुद पोलियो रंज दा कदमुना उद्रवले हुमशी नु पदी वजह द पोलियो द हर मुहिम पमहाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई। अखपल माशुमानो ता द पोलियो द मखनीवी द्वसास की वरकवल महेरवई। जकच हुम द गसास की द माशुमानो द बदन दिफाई ताकत ज्यातवी औ द हगी द खूबुन वलवत वजरिमुमी। पोलियो यानी मुस्तकिल माजूरी।
6: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
7: सुनते रहो GFM 90.8।

0: सही पंहिंजे ॻोठ जो पंहिंजे शहर जो नालो लिखो उन खां पोइ ऐं सेंड कजो मैसेज जो नंबर आहे उहो नंबर आहे पंहिंजे ॻोठ जो पंहिंजे शहर जो नालो लिखो ऐं हिकु यानी 888 मोकिलियो मैसेज त तव्हांजा मैसेज दिलि सां शामिल करे
1: वठो।
2: सो ही जेके मोहबती महफ़िलूं आहिनि उन्हनि महफ़िलुनि में अवांजा मैसेज अचण लाज़मी हूंदा। अवांजा मैसेज ईंदा त कंदासीं शामिल ऐं ॾाढी ख़ुशी थींदी। त अॼु असां सां गॾु केरु हूंदो ऐं केरु असांजे हिननि इंतज़ार जे घड़ियुनि खे ख़तमु कंदो। बाक़ी जेके मैसेज तव्हांजा असांखे जीअं जीअं पहुचंदा शामिल कंदासीं। असांखे दोस्तो महिरबानो कदरदानो हिकिड़ो मैसेज पहुतो आहे जंहिंमें लिखियलु आहे त अस्सलामु अलैकुम ऐं ॻोठ आहे नोटो ऐं नोटो खां असांखे यादि कयो आहे रामचंद कुमार कोहली साहब ऐं गोविंद गुल अवां सां गॾु थैंक यू जी कमलेश तव्हां सां गॾु ॿुधे पियो किरण कुर्ब कमलेश ऐं रामचंद तव्हांजी मोहबतूं तव्हां असांखे ॿुधो था अव्हांजा वॾा वर्ड जो तव्हां असांखे ज्वाइन कयो आहे मोहबतूं सदाई सुखिया हुजो। लुटको मोरी खां असांखे ॿुधे थो अब्दुल रही अब्दुरहमान लगारी ओके ऐं मिठा खान लगारी तालिब हुसैन लगारी अव्हां सां गॾिजी ॿुधनि पिया अव्हां जूं मोहबतूं ऐं मण मोहबतूं तव्हां जूं थैंक यू अवां बि ख़ुशि हुजो आबाद हुजो थैंक यू भलीकार चवंदासीं। ऐं जनाब असांखे झलूरी जा मैसेज आहिनि लिखियलु कुझु कोन लिखियलु आहे सर कॉल जो नंबर कहिड़ो हूंदो उहो नंबर ॿुधाईंदासीं जॾहिं कॉल्स वठंदासीं तॾहिं नंबर ॿुधाईंदासीं ऐं तव्हां साण बिल्कुलु शेयर कंदासीं त कहिड़ो नंबर हूंदो जंहिं ते तव्हां असांखे कॉल कंदा। तेसि ताईं नोट करे वठो नंबर जंहिं ते मैसेज कंदो MTI स्पेस ॾियो पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखो पंहिंजो नालो लिखो ऐं 888-188 ते मैसेज हाणे ई मोकिले छॾियो। ॾिसंदासीं त अॼोके असांजे हिन बज़म में शामिल थियण लाइ केरु केरु अचण वारो आहे कंहिंजो मैसेज असां ॾींदो त पोइ उहे समूरियूं ॻाल्हियूं तव्हां सां कंदासीं। पर पहिरीं ट्रैक ॾांहुं हली वठूं ट्रैक खां पोइ तव्हांजा काफ़ी मैसेज असां टैक्स मौजूद आहिनि जेके शामिल करणा आहिनि। थोरो इंतज़ार कजो ही ट्रैक तव्हांजे नाम कयूं था सादिक फ़क़ीर जी सदा आहे। सादिक फ़क़ीर साईं जेतोणीक असां वटि न आहिनि रहिया पर हुन जो आवाज़ असां वटि तव्हां क़यामत हूंदो अचो त गॾिजी ॿुधूं हू परे आहे परे आहे परे आहे

0: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: man, tu na mera hater, tu to mera fan.
1: White H Beauty Cream, 5-day beauty plan ke saath. Aloe vera, vitamins aur avocado ki bharpoor khoobiyan, jiske minerals skin mein fully absorb ho jaye, skin ko fair aur fresh banaye. Aapko de beta nikhra nikhra chehra, White H Beauty Soap se mile, chamakta nikhar taazgi ke saath. White H Beauty Cream, glowing skin ka raaz. A product of Biocon International Pakistan.
2: Sakran ki ho, to aawaz bhi sakran ki hai.
3: Sunte raho GFM 90.8.
4: Har hua transport jika halle thi, ote taha jai geet dhalan. ताँ के किधो फील थे तो मुझे हर जगह थे मुझे गीत इन बसन में मुझे इन सही
5: बसन में टिकटॉक थे बिल्कुल ट्रेंडिंग में था
4: लाइक लाई आर्टिस्ट रहता है जा गाना मना ये समझो गाए करे हुए विस्तार थी
6: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे चाहे तो वे जदे बियो को आर्टिस्ट मुझे गीत गाईंदा तो मुझे खुशी थी आए हां ये अल्लाह पाक असंजा ही नौजवान हैं ये सुठी गाला मुझे गीतन के जदे पाण वरी बीर गाईंदा हैं तो इलाही सुठो लगंदो आ मुखे बुरो न लगंदो आ खुशी थी आए तो मुझे इन लायक समझो धोजो मुझे गीतन के हर जगह से घड़ी घड़ी उन रिपीट कर गायन पाया तो यह खुशी जड़ी गाल है मुझे
4: या वही प्राउड की बाकी गाल है।

0: 4 to 5 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islami Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based
2: kadam. Ek nayi duniya da vadhan tha, par polio inhan kadman ke roke bhi sage tho. Inhiya kare jadhe bhi polio muhim dauran polio workers ji dastak the ta dar kholyo. ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाओ जा ॿ कतरा ज़रूरु पीआरियो छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था पोलियो मतिलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी
1: सोना सिर्फ़ ज़ेवर नहीं हर घर की अमानत होती है इसीलिए बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान का पहला साथ बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो जी 111-475-264 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें शरायत ज़वाबित लागू हैं
3: मंजिल अभी बाकी है और सफर रवा है इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की की जाल छाया शाहराह है भुट्टो कराची के सनती इलाकों बंदरगाहों और मोटरवे M9 को आपस में जोड़ रही है जबकि 141 से ज्यादा सड़कों और 825 किलोमीटर रोड नेटवर्क्स की बहाली मुकम्मल की गई जिससे लाखों अफराद की आमद और रफ्त तिजारत और रोजगार को नई रफ्तार मिली तवानाई के शोबे में थरकोल मंसूबा सिंध की तरक्की का अहम संगे मील बन चुका है जहां मकामी कोयले से हजारों मेगावाट बिजली पैदा करके कौमी ग्रिड को मजबूत बनाया जा रहा है नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट घारो विंड कॉरिडोर और शमसी तवानाई के मंसूबे तवानाई के मुतबादिल जराए को फरोख दे रहे हैं SPHF दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा है जिसके तहत 21 लाख घर तामीर किए जा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की दूर अंदेश कयादत तरक्की पसंद सोच अवामी खिदमत के विजन की रहनुमाई में मसरूफ है हुकूमत सिंध ने जदीद और मुफ्त तिब्बी सहूलियात का मजबूत निजाम कायम किया SIUT SICVD JPMC NICVD के सैटेलाइट सेंटर्स गंबर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जदीद सहूलियात दस्तियाब हैं जबकि सिंध इंस्टीट्यूट चाइल्ड हेल्थ न्यूरोलॉजी में लाखों बच्चों को इलाज फराहम किया जा रहा है सिंध हुकूमत ने अवामी ट्रांसपोर्ट में जदीद दौर का आगाज किया पाकिस्तान की पहली ईवी बस पिंक बस और खवातीन को मुफ्त स्कूटीज फराहम की जा रही है जो खवातीन को महफूज और बावकार सफर फराहम कर रही है तालीम के फरोग के लिए हुकूमत सिंध ने डाउ यूनिवर्सिटी जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज फॉर वेमेन शहीद बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी लियारी बेगम नुसरत भुट्टो वेमेन यूनिवर्सिटी सखर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद और अरोर यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट आर्किटेक्चर डिजाइन हेरिटेज शहीद बेनजीर भुट्टो गर्ल्स कैडेट कॉलेज लाड़काना और बख्तावर कैडेट कॉलेज फॉर गर्ल्स खसूसी अफराद को बाइख्तियार बनाने के लिए स्पेशल एजुकेशन बहाली हुनरमंदी और खुद मुख्तार जिंदगी के मौके को मजीद वसअत दी गई खैरपुर स्पेशल इकोनॉमिक जोन साइट कराची नूरियाबाद बिन कासिम और दीगर सनती जोन्स में बुनियादी सहूलियात बेहतर बनाकर मुल्की और गैर मुल्की सरमाया कारी को फरोग दिया जा रहा है जरई खुशहाली के फरोग के लिए सिंध हुकूमत ने किसान दोस्त मंसूबों का एक जामे सिलसिला शुरू किया बेनजीर हारी कार्ड के पहले मरहले में तकरीबन 298,000 रजिस्टर्ड किसानों को बीज खाद जरई अदवियात जदीद मशीनरी पर सब्सिडी रियायती कर्जे फसल बीमा और कुदरती आफात की सूरत

लहर, जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला अला साईं जा अनेक अहसान आहिनि, तव्हांजो दुआऊं आहिनि। अवां सां गॾु बि केरु थो ॿुधे?
1: असांजो तव्हां लाइ हर दम दुआऊं ईअं ताला तव्हांखे ख़ुशि करे।
0: आमीन सुम आमीन। अवां सां गॾु ही शो ॿियो केरु पियो ॿुधे?
1: हा असांजा दोस्त पिया ॿुधनि, दिलीप कुमार मेंघवा, रामचंद मकवाणो, चोहन कुमार कोली, मोहम्मद आचर खासकेली, कुर्बान अली खासकेली, गुलाम रहीम बलोच, जेके बि दोस्त ॿुधनि पिया सभिनी खे रुस्तम अली पवार जे तरफ़ां सिक भरिया संभाल सलाम।
0: वालेकुम असलाम, कुर्ब तव्हांजा कुर्ब, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो, थैंक यू भलीकार। जी जनाब, असांखे हाफिज़ अब्दुल जब्बार सुमर ऐं हाफिज़ मोहम्मद हारून सुमरो पाटार बदीन खां ॿुधनि पिया भलीकार। चवंदासीं नंढिड़ो नफ़ीस खट्टी असांखे ॿुधे थो मिया पोटा तलहार खां, अवां जूं बि तमामु घणी महिरबानी भलीकार। ऐं ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केरु। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम भाउ, कहिड़ो हाल आहे?
0: भाउ दो आहे, केरु भाउ पियो ॻाल्हाए?
2: घोट बाबू वारो थरपारकर खां दिलीप कुमार मेघवाट ॻाल्हायां पियो।
0: जी दिलीप कुमार, अवां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे?
2: जी मूंसां गॾु नवल राज, दानिश कुमार, सूरज गुल, शंकरलाल मेघवाट, रोस्तम अली पवार, रामचंद मकवाणो ऐं मोहम्मद सिद्दीक पाणो, मलक मोहन पलट, ॿिया जेके ॿुधनि पिया सभिनी खे।
0: अच्छा दिलीप कुमार, हिकिड़ो नंढो सवाल आहे त तव्हांखे ॻाइण सुठो लॻंदो आहे या रोअण?
2: मूंखे ॻाइण सुठो लॻंदो आहे या रोअण? अक्सर तौर मूंखे वही कम दुखिया आहिनि,
0: मैन न खिली सघंदा आहियो, न ॻाल्हाए सघंदा आहियो, न ॻाए सघंदा आहियो, न रोई सघंदा आहियो, ईअं आहे छा?
2: खिलण सुठो लॻे थो, खिलण।
0: हा पर माना हूअं जेकॾहिं रोअण ऐं ॻाइण मां का शइ त तव्हांखे पसंदि करणी पए त
2: पोइ त ॻाइण चवंदासीं, पर मसइलो इहो त ॻाए सघूं कोन था।
0: हा इहो वॾो मसइलो, थैंक यू जे लाइ लख थोरा मिठा माण्हू, थैंक यू थैंक यू, ख़ुशि हुजो। ओके जनाब, बिल्कुलु आसानीअ सां तव्हां कॉल करे सघो था 0334257866 असांजो नंबर। कॉल ते असां सां गॾु केरु हूंदो हुनजे लाइ ॾिसंदासीं कॉल ते केरु आहे। हलो, अस्सलामु अलैकुम।
3: वालेकुम सलाम दा।
0: जी केर?
3: माण्हू कुर्म थो ॻाल्हायां।
0: छा हाल आहे, ख़ुशि आहियो?
3: अलहमदिल्ला, दुआऊं ॿाहिरनि जूं। असीं बि प्रोग्राम ॿुधूं पिया 99.4 जी लाइव स्टूडियो जी एफएम, डायरेक्ट हले पोइ था ॿुधूं पिया।
0: अच्छा वाह वाह वाह वाह। अच्छा अवां सां गॾु बि चलो ॿिए कंहिंजी गिला न आहे करणी, मूंखे इहो ॿुधायो त शो मां में तव्हांजा दोस्त कहिड़ा कहिड़ा आहिनि? सभिनी खे वालेकुम सलाम। भला कुर्बानी, हिकिड़ी नंढी ॻाल्हि पुछां, ॻाइण खिलण रोअण इहे सभु शयूं हर कंहिंखे थियूं अचनि, भला इन्हनि मां जा का शइ तोखां पुछां त कहिड़ी शइ पंहिंजी पसंदि ते ॿुधाईंदे? खिली ॿुधाईंदे, रोई ॿुधाईंदे, या ॻाए ॿुधाईंदे?
3: जेको तूं पुछी
0: न, तव्हां पंहिंजी चॉइस ते ॿुधाए छॾियो।
3: असां रोई सघंदासीं, खिली सघंदासीं, ॻाए सघंदासीं, जेको तोखे पसंदि अचे।
0: तव्हां पंहिंजी मर्ज़ी सां ॿुधायो।
3: हा ॿुधायो,
0: हा ॿुधायो।

0: तर...
1: अदा बस रोआड़े छी आई तो मुझे माना जबरदस्त मुझे लगे पर आऊं वरी अलचो दिल माना भरजी आई है एडो सुठो मुझे लगायो थैंक यू खुश हो जो आबाद हो जो जी मजे समय नंबर है 0334-3525-7786 यानी बुढ़ी 3044-3525-7786 कॉल ते केर हुंदो उन जे लाए स्क्रीन में अखियो विछायल एंड सदासी कॉल ते केर आहे ओके जी कॉल अटेंड था कयो हेलो अस्सलाम वालेकुम साईं मीरानी साहब खुश आयो चंगा भला मतारा जोड़ वाह वाह जबरदस्त आई मीरानी साहब जगह हाँ मौसम चेंज पी थिए तब्दील पी थिए इन तब्दीली जेका मौसम जी है इहा हूं भी चवंदा आहिनि न मौसम ऐं माण्हू जॾहिं मटबाइनि त तकलीफ़ थींदी आहे तव्हांखे छा महसूस थींदो आहे जी मुंहिंजे चवण जो मक़सदु आहे त मौसम मटिबी आहे न तॾहिं माण्हू खे ज़ुकाम बुखार खंघ थी पवंदी आहे ऐं माण्हू मटबाइनि त बि दिलि ॾुखी पवंदी आहे तव्हां छा था चओ हिन हवाले सां अच्छा इन जे करे चलो हिकिड़ो कमु कयो भला तव्हां पंहिंजे दोस्तनि जा नाला खणी वठो जेके दोस्त तव्हां ॿुधनि था वालेकुम असलाम वालेकुम असलाम थैंक यू सर थैंक यू महिरबानी ओके जनाब साथ में कंदासीं हाल ऐं अहिवाल नंबर असांजो 0334-3525-7786 हिकिड़ी वधीक कॉल अची रही आहे ॾिसंदासीं कॉल कंहिंजी आहे ऐं उन कॉल खे ॿुधी था वठूं हलो अस्सलाम वालेकुम बल्कि कोशिश कयूं था कॉल असीं अटेंड करे वठूं हलो अस्सलाम वालेकुम हलो अस्सलाम वालेकुम शायदि आवाज़ कोन पियो अचे आवाज़ अचे पियो वालेकुम असलाम केर साहब ऐं किथां खां मोहबती मंगण निज़ामाणी साहब खुश आयो चङा भला मतारा जोड़ अलहमदुल्ला अव्हां जी दुआ लॻी पई आहे अव्हां सां गॾु नंढड़ो अहसान ॿुधंदो हूंदो साईं महिरबानी साईं शायर हाफ़िज़ मोहम्मद निज़ामाणी असांजी धरती जो तमामु वॾो शाइर आहे जेकॾहिं उहो ॿुधे पियो त असांजा भाग भला आहिनि ऐं लख थोरा तव्हांजा मोहबती मंगण साहब तव्हां सोहराब निज़ामाणी जो तारीख़ी ॻोठु आहे कड़ियो गंवर जे वेझो तव्हां ॿुधो पिया किरोड़े कुर्ब अव्हांजा भला सोहराब निज़ामाणी जे ॻोठ जा भाउ मोहबती मंगण अव्हां ख़ुदि झूंगारींदा आहियो गाए ॿुधाईंदा आहियो गर्मी लॻी आहे किथे गाए सघंदासीं इहा ॻाल्हि सची ठीकु आहे भला दोस्तनि खे यादि करियो था अच्छा तमामु घणी महिरबानी मिठा माण्हू तमामु घणी महिरबानी तव्हां मुंहिंजे प्रोग्राम जो इंतज़ारु था करियो बसि ॿियो छा घुर्जे असांजा सभई प्रोग्राम तव्हां जे नाओ बसि चलो चलो थैंक यू वेरी मच लख थोरा तव्हांजा मोहबती मंगण शायदि सिग्नल घटि हुजण करे कॉल कटिजी वई पर ख़ैर तव्हांजी ॻाल्हि ॿोल असां ॿुधी वरिती आहे ऐं हाणे ॾिसंदासीं त असां सां गॾु कॉल ते केरु आहे हैलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम असलाम केरु साहब ऐं किथां खां जी चांडिया साहब छा हाल आहे ख़ुशि आहियो अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला तव्हां सां कॾहिं ॿियो केरु पियो ॿुधे
0: पर मैं सोच रहा हूँ कुछ दोस्त भी नहीं साजिद पियांडे बाबर जाकिर ज्ञानदास पियांडे।
1: अच्छा अच्छा सभी की भली कार साईं भली कार मेहरबानी।
0: ओके ओके सर
1: मेहरबानी। लख थोड़ा जी जनाब साजे आवाज साथ में। असा कॉल जो इंतजार कंदे कंदे एकड़ी कॉल अटेंड था करे वठंदा सी दिसना सी कॉल ते के राय बल्कि कॉल ड्रॉप थी चुकी है बड़ी 3044525786 जे नंबर ते अवारी कॉल पर हाने कॉल के जी है। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम केर साहब है किथा का
2: लार खान गला गयो
1: ज़ोइब खान साहब भली कार चवंदा सी तवा के वालेकुम सलाम ऐं महिरबानी असांजी सॼी टीम खे दुआऊं ऐं सलाम ॾियण जे लाइ अवां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे ज़ोइब मुंहिंजो आवाज़ अचे पियो मुंहिंजो आवाज़ अचे पियो ज़ोइब तव्हां ताईं
2: जी ज़बरदस्त आवाज़ अचे पियो सही तव्हांखे
1: हा अच्छा ज़ोइब तव्हां असां गॾु ॿियो केरु थो ॿुधे हीउ प्रोग्राम अच्छा तमामु घणी मोहबत पर अॼु ज़ोइब जेके चवां तव्हां मूंखे ॻाए ॿुधायो ॿुधाईंदा
2: बिल्कुलु ॿुधाईंदासीं पर तव्हां फरमाइश ॿुधी कोन
1: सर असल में कालोन जे विच में बैकग्राउंड में गाना हलंदा आहिनि फुल गानो थी नथा नशर करे सघूं बाकी ईअं आहे त जॾहिं सुभाणे वारो प्रोग्राम हूंदो त पहिरें कलाक में तव्हां मैसेज कंदो त उहो कलाम ज़रूरु हलंदो न न को मसलो कोन्हे गीत खारा न चओ गीत खारा न चओ ज़मानो चवे त वञी चवे तूं त प्यारा न चओ हा ॿुधाए ॿुधाए

0: महिरबानी लख थोरा तव्हांजा ख़ुशि हुजो आबाद हुजो। हीउ आहे GFM 88 रेडियो नेटवर्क। तव्हां ॿुधो पिया GFM लाड़काणो, GFM सखर, GFM मेरापुर, GFM सकरंड, GFM मेरप्रखास ऐं GFM मातली। शो जो नालो आहे जी हा जनाब सिंधड़ी जी शाम ऐं RJ आई यूनिस बकारी मोहबतूं अवां जे नाम करे वठूं ॾिसूं था। हलो
1: वालेकुम सलाम
0: जी, केर साहब अलहमदुल्ला अल्लाह पाक जा किरोड़े करम ॿुधायूं अवां सां गॾु ॿियो केरु थो ॿुधे? हा उहो ईअं असल में नंबर ते रश आहे। इहो अहिड़ो वीचारो नंबर आहे टाइम ते, इन ते एॾी रश थींदी आहे। जेकॾहिं नंबर खुद ॻाल्हाए सघे आहे न त रीहूं करे मूंखे छॾे भॼी वञे।
1: हा
0: जी ॿ नंबर आहियूं कोन, हिकु नंबर आहियूं। अच्छा मिठा माण्हू, भला अव्हांखे ॻाइण लॻंदो रुअण या खिलण? खिलण।

0: This program is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: Har bar ja nandda kadam ik nayi duniya da vadhan ta par polio inan kadman ke roke bhi sage tho. इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इनन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फार्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो
4: अजरक के रंगों से रंगी
5: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी
4: सिंध के दिल से निकली आवाज
5: GFM 88 Network.

0: जी जनाब, वेलकम बलिकार खुशामदीद। ही आए जी FM 88 रेडियो नेटवर्क एकी वक्त आवा बुदुबे जी FM मातली, जी FM मेरपुर खास, जी FM मटियारी, जी FM मेरापुर, जी FM सकरण, जी FM मोरो, जी FM लाड़कानो, आई जी FM सखर। शो जो नालो आए सिंधड़ी जी शाम, आई यूनुस बकारी जा सलाम। आखिरी साथ आखिरी लम्हात, सो जनाब कॉल्स जे लाए नंबर है 0334352578 6। रिसनाजी कॉल ते केरा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी। केर साहब है किथा खा
1: आदा इमाम जी ने बमरो वर्द क्या सादा पर गामेटा खुश आए बे खैरा।
0: अल्हम्दुलिल्लाह, छा हाल है इमाम जी नु बमरो साहब? खुश आयो, ठीक आयो, चंगा भला?
1: हाँ अलहमदुल्ला, अल्लाह से दो फर्स्ट क्लास असा बिल्कुल खुश लगा क्यों पर यो आ गए ता कार जो वाइटिंग खोलियो नंबर पे पता सुकी
0: ते वरी असल में टोन जो आवाज तो अचे मां जे में रेडियो शो तो के ना ते एकडो ता सा मुजी गाल पे हले 10 मथा कालू लगंदी उन सबनी यो गोड इतरो तो थिए जो वो क्वालिटी न थी वने असा जी मजबूरी आ। मजबूर मजबूर काल वेटिंग जे लाइ इशू असा इहो ई हिकिड़ो आहे त असां काल जेकॾहिं वेटिंग वारो था रखूं मुंहिंजो अॻे रखंदो आहियां त सभई जेके आरजेस या शो थींदा हुन में टोन टोन जो आवाज़ न ईंदो आहे। मां वरी कंहिं जो आवाज़ अचे थो माना उहो सुठो कोन पियो लॻे इन जे करे। साईं तव्हां जेको वणे सो ॿुधायो, दोस्तनि जा नाला वठो, गानो ॻाए था ॿुधायो, तव्हां मूं सां खिली था ॻाल्हायो, जेका तव्हांजी मर्ज़ी। दोस्तनि खे सलाम अचे, सिर्फ़ ॿ सिटूं थल ॻाए ॿुधाईंदा, वधीक न।
1: भागन में के सूर हया तजे दिल लगी परदेस में वस में नहा आऊं तदे रोई तया थो दाऊं कदे लाले वगो कोन लाया में
0: जबरदस्त। अच्छा भला हाँ दोस्तन ने नाला खी वेठो साईं
1: दोस्त ॿुधंदा जेके दोस्त ॿुधंदा उत्तर ॾखण ओल ओवर जिते तव्हांजो मिठा आवाज़ मतिलबु वञे सभिनी लिस्टर इलाही सारा सलाम इमाम ॾिनो बंबरे तरफ़ा साईं।
0: महिरबानी साईं इमाम ॾिनो बंबरो साहब, वेलकम वेलकम। जनाब साज़ ऐं आवाज़ साथ में आख़िरी लम्हात ऐं आख़िरी लम्हात में तव्हां असांखे कॉल करे सघंदा 0334352578 6 नंबर आहे असांजो। ॾिसंदा कॉल ते केरु? हलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी, हिकु दफ़ो ॿीहर नालो ॿुधायो। वालेकुम असलाम जी, अदा नालो ॿुधायो पंहिंजो। ओके जनाब, हिकिड़ो असां वटि कॉल अचे मुश्किल सां थी ऐं वरी हुन में दोस्त असांजी ॻाल्हि ॿुधण बजाए रुगो हलो हलो था कनि। ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केरु आहे। हलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: केर साहब ऐं किथां खां?
1: सर अल्ताफ हुसैन वठो पियो ॻाल्हायां, सजावल मड़े बुला खान खां। कहिड़ा हाल में चयो तबियत ठीकु आहे?
0: अलहमदुल्ला, सजावल जे वेझो मड़ो बुला खान खां तव्हां असांखे ॿुधो पिया, कहिड़ा हाल आहिनि अल्ताफ वोठा साहब?
1: ऐं अलाह जा कर्म लॻा पिया आहिनि, अवांजी भाव लॻी पई आहिनि। तव्हां ॿुधायो चयो तबियत ठीकु आहे? तव्हांजा प्रोग्राम माशाला ॾाढा सुठा ॿ टे ॾींहं असांजे माथिरी FM कोन पिया हली, पर अॼु अहिड़ी साफ़ आहे, सफ़ा महबूबा कचहरी ॾींहं तव्हांजा आवाज़ साफ़
0: आहे। वाह वाह वाह वाह वाह वाह, थैंक्यू थैंक्यू। अवां सां गॾु बि केरु थो ॿुधे?
1: मूंसां गॾु मुंहिंजो बाबा साईं मोहम्मद यासीन वठो तव्हांजो प्रोग्राम ॿुधे पियो, जेके ॿुधनि था सभिनि खे अल्ताफ हुसैन वठे जा खोड़ सारा सलाम।
0: वालेकुम असलाम, बाबा साईं खे बि सलाम साईं। लख थोरा लख थोरा। जी जनाब, साज़ ऐं आवाज़ साथ में आख़िरी लम्हात ऐं आख़िरी लम्हात आहे, यकीन जेके थोरा मिंट बचिया आहिनि उन थोरनि मिंटनि में वञी कॉल्स वधि में शामिल पिया कयूं। ॾिसूं था कॉल ते केरु आहे। हलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: केर साहब ऐं किथां खां? शहज़ाद डंगड़ो साहब, अवां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे?
1: घर वारा बुधन पिया
0: जी जी
1: कुछ दोस्त बुधन पिया
0: ठीक है सभी जो तमाम घनी मेहरबानी लख थोरा ओके जनाब ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केरु आहे ऐं शहज़ाद डंगणे जी कॉल खां पोइ कॉल कनेक्ट थिए थी ॾिसंदासीं कॉल ते केरु हूंदो ओके कॉल अची चुकी आहे त कॉल खे अटेंड करण जी करियूं था भरपूर कोशिश ऐं हलो अस्सलाम वालेकुम साईं अलहमदुलिल्लाह केरु साहिब ऐं किथां खां हा साईं बिल्कुलु बिल्कुलु महिरबानी तव्हांजो तव्हां असांखे ॿुधो था ऐं कॉल मिलाईंदे मिलाईंदे नेठ त कॉल मिली वई साईं साईं कुर्ब तव्हांजा कुर्ब तव्हांजा तव्हांजा करे बि केरु थो ॿुधे
1: सलीम राजा ॿुधे थो मुंहिंजो मामो यूनिस जतोई अब्दुल जब्बार जिलसार जागीराणी काफ़ी संगत ॿुधे थी घणी आहे पर इहे ख़ासि मुंहिंजा यारणा आहिनि
0: सभिनी खे सिक भरियो सलाम असांजो बि क़बूल पवे
1: वालेकुम सलाम मौला तव्हांखे साईं शादाबाद रखंदो मौला वधाईंदो कंटिन्यूलर कंदा आहियो रोज़
0: जी रोज़ न हूंदो हफ़्ते में ॿ ॾींहं हूंदो आहे यानी अॼोकी ॾींहुं सूमर ऐं अंगारे ते शाम जो 5-7 वॻे ताईं
1: मौला वधाईंदो मौला शान वधाईंदो साईं ॿियो अर्ज़ु आहे हिकिड़ो प्रोग्राम में घणो टाइम आहे
0: बसि हाणे वञी ॿ टे मिंट बचा आहिनि
1: साईं पोइ असांखे कलाम ॿुधाईंदो आख़िर में ॿ अढाई लोधड़ा ई ॿुधायो
0: साईं हाणे ई माना हलनि पिया गाना बैक टू बैक तव्हां जीअं कॉल ख़तम कंदो तव्हांखे कुझु ॿुधण में ईंदो
1: न असांखे असांजी दिलि जी जेको ॿुधाईंदो ॿ टे लाइनूं
0: ॿुधायो ॿुधायो नालो वठी वेठो फनकार जो
1: हा अब्दुल गफ़ूर जो आहे इहो कलाम
0: ॾिसूं था ॻोल्हियूं था जेकॾहिं असांखे तकिड़ो तकिड़ो मिली वियो ज़रूरु ॿुधाईंदासीं
1: अब्दुल गफ़ूर जो अथव तमामु ॿुधण खे सलाम ख़ासि तव्हांखे सलाम
0: वालेकुम वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम महिरबानी साईं महिरबानी लख थोरा कुर्ब साईं थैंक यू वेरी मच

खेत साहब है कितना का मेहरबानी अहमद नवाज साहब थैंक यू वेरी मच तांगे पेरु दफो प्रोग्राम में चण दे भलीकार वेलकम इंशाल्लाह तां बुधंदो थैंक यू वेरी मच सर तांजी कॉल पोती पर मुझे वंजणे वक्त थी वालेकुम अस्सलाम कुर्ब साईं कुर्ब तांजा मौजिस खातिर नजर आती नी ते वंजण जो वायु वारी दे वहां जो यूनुस बकारी वंजण चाहे तो हयाती रही सुभाणी शाम जो पंजे वगे का सते वगे ताईं सागे ही नेटवर्क ते सागे ही टाइम ते वहां जो यूनुस बकारी वहां जी खिदमत में हाजिर होंदो कहीं गलती गुस्ताखी जो एहसास थे हो तो माफी जो तलबगार आया फिलहाल यारो यारी मोकलाए तो यूनुस बकारी ने दुआ सा तो जिते भी अवां जो पेर हो तो खुशियां ढेर खैर खैर हो अल्लाह निकेबान।

0: It's 7 PM. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: कोई ना कोई चीज करेंगे, ये बार बार अफोर्ड नहीं कर सकते.
4: इस्लामाबाद ते कंखे पे चढ़ाई करण न ॾींदासीं. हिन भेरे विंड्स फॉर ऑल थींदो. केपीअ जूं हालतूं सभिनी जे साम्हूं आहिनि. पीटीआई वटि अञा बि वक़्तु आहे त बंद घेटीअ तरफ़ न वञे. वफ़ाकी घरु वज़ीर मोहसिन नक़वी ख़बरदार करे छॾियो. लाहौर में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे मोहसिन नक़वी चयो त लांग मार्च थियो त हाईकोर्ट जे फ़ैसिले ते रूह मूजिबि अमल कयो वेंदो. हिन भेरे ईअं न थींदो त पीटीआई वारा अचनि ऐं मुल्क 10 या 20 ॾींहं बंदि थी वञे. हिन भेरे मुस्तक़िल हल कढियो वेंदो. अफ़ग़ानिस्तान सां लाॻापा दहशतगर्दनि खे रोकण ते मामूल ते न ईंदा. आलमी मार्केट जे हिसाब सां तेल महांगो थींदो आहे. हालतूं बरक़रार रहियूं त 1000 रुपए में बि लीटर पेट्रोल न मिलंदो. इस्लामाबाद ते चढ़ाई करण न पिया वञूं. कॾहिं बि कानून हथ में न खणंदासीं. हुकमरान भड़काए रहिया आहिनि पर असीं सियासी माण्हू आहियूं. सियासी चैंपियन ॿुधाइनि त एहतजाज खां सवाइ ॿियो छा कजे. पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर जी पिशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस. बैरिस्टर गोहर चयो त पुरअमुन रहण जी त सज़ा मिले पई. बानीअ जूं भेनरूं जेल में आहिनि. 1500 कारकुन गिरफ़्तार थी चुका. सेनेटर्स ऐं असेंबली मेंबरनि खे बि गिरफ़्तार कयो वियो. इस्लामाबाद ईंदासीं त हर पासे पाकिस्तानी झंडा हूंदा. जमियत उलमा इस्लाम जे सरबराह मौलाना फज़ल रहमान वज़ीर आज़म ख़िलाफ़ बेतमादी रिथ जो मशरूत इशारो ॾेई छॾियो. मौलाना फज़ल रहमान चयो आहे त फ़िलहाल मुख़ालिफ़ धुर बेतमादी रिथ आणण जी पोज़ीशन में नाहे. पीपल्स पार्टी हुकूमत खां बाक़ायदा धार थी त इहा अक़लियत वरी हुकूमत हूंदी. उन खां पोइ बेतमादी रिथ आई त हुन जो साथ ॾिनो वेंदो. पीटीआई खे एहतजाज जो मुकमल हक़ आहे. इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे मौलाना फज़ल रहमान वधीक चयो त दांधली ज़रिए आयल हुकूमतूं आहिनि ऐं कानून पामाल करे रहियूं आहिनि. घर में बाह लॻल आहे पर कॾहिं नवनि सूबनि त कॾहिं वरी NFC जा मसला छेड़िया वञनि था. मुल्क जे ॿिनि सूबनि में हुकूमत जी रिट नाहे रही. पीटीआई बानीअ जूं 3 भेनरूं लाहौर में नज़रबंद. अलीमा ख़ान खां पोइ उज़मा ऐं नूरीन नियाज़ी खे बि नज़रबंद करे कोट लखपत जेल मुंतकिल कयो वियो. डीसी लाहौर जो चवणु आहे त पुलिस जी सिफ़ारिश ते 3 MPO तहत ॿिन्ही भेनरुनि खे 30 ॾींहनि लाइ कोट लखपत जेल मुंतकिल कयो वियो. गुज़िरियल ॾींहुं अलीमा ख़ान खे बि नज़रबंद कयो वियो हो. खैबर पख़्तूनख़्वा जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में सिक्योरिटी फोर्सिस जो ऑपरेशन अपघाती बमबारनि समेत 37 दहशतगर्द मारिजी विया. सुध समा वारी वज़ारत मूजिब खैबर पख़्तूनख़्वा में दहशतगर्द हमलनि बाद कोहाट हंगू ऐं टल में गुज़िरियल राति ऑपरेशन कया विया. फिज़ाई ऑपरेशन दौरान 37 दहशतगर्दनि खे जहनम भेड़ो कयो वियो. सरहदी इलाइक़े में खारजनि जा थाक बि तबाह कया विया. इतलात वफ़ाक़ी वज़ीर अताउल्ला तारड़ चयो आहे त डिॼणा दहशतगर्द लिकी हमला करे रहिया आहिनि. धरतीअ जे बहादुर पुटनि मुल्की दिफ़ा लाइ जान

0: ख्वाबन के उड़ाम डेन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

सुनती हो तो आवाज भी सुनती है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज़,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध

0: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां। हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट, हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

रही हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: It's 9 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: एक हिस्सो सूबन के टुकड़ा करण जी गाल करे खामोश आहिन। एक फर्द गलाए पियो वो थींदो केर आहे, मुल्क अंदर उन जी हैसियत केड़ी आहे, उन जी सुञाणप छा आहे, हू जहें घर जो नौकर आहे उन घर जी नौकरी करे। जेयूआई सरबराह मौलाना फजल रहमान मोहसिन नकवी के सत सुरियूं बुधाए छडियूं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे मौलाना फजल रहमान चयो त जेको शख्स सूबन जी ॻाल्हि करे पियो उन जो मुल्क जे मसलनि सां को बि वास्तो न आहे। एतिरा बेवस असां बि नाहियूं जो तव्हां मुल्क सां खेॾंदा रहो ऐं असां ख़ामोश रहूं। मुल्क नवनि मसलनि जी सट सही नथो सघे।

एमक्यूएम जी क्यादत जेका बोली गालाए थी उहा कबूल करण जोगी नाहे। उर्दू गालाईंदड़नि जी अक्सरियत पाण खे सिंधी समझे थी। एमक्यूएम लसानी बुनियाद ते विरहाङे ऐं नफ़रत जी सियासत करे रही आहे। सिंध असेंबली नवनि सूबनि बाबति पंहिंजो फ़ैसिलो ठहराउ ज़रिए ॾेई ॿुधाए चुकी आहे। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील मेमण जो एमक्यूएम अॻवान जी प्रेस कॉन्फ्रेंस ते रदि अमल। शर्जील मेमण चयो त सिंध हुकूमत खे हथरादू कोठींदड़ एमक्यूएम वारा पहिरियां पंहिंजो मैंडेट साबित कनि। कराची खे भताखोरी ऐं ॿोरी बदलाशन जी सियासत एमक्यूएम ॾिनी, हाणे फितने फसाद विगोड़नि ऐं नवे वारे ॾहाके जी सियासत चाहिनि था।

जमात इस्लामी जो पेट्रोलियम डे खिलाफ़ निकतल ट्रेन मार्च जो इस्लामाबाद डां सफर जारी रोहड़िया का मुल्तान लाइ निकतल शालीमार एक्सप्रेस सादकाबाद पहुंची वही। मार्च में शरीक मानू अज रात मुल्तान में तरसंदा और सुभाने इस्लामाबाद लाइ रवाना थींदा। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम जो चवण है तो पेरों मरहलो गुजरी वो बे मरहले में दाखिल थी चुका है। बलोचिस्तान के जबलन ए मैदान में भी मार्च शुरू थी चुको है। रुगो एक ही मुतालबो है तो लेवी भत्तो खत्म कर। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाकन में सिक्योरिटी फोर्सेज जो ऑपरेशन आपघाती बम्बारन समेत 37 दहशतगर्द मारजी वया। सिद्ध समा वाले वजारत मूजिब कोहाट हंगू ए टल में गुजर रात ऑपरेशन किया वया। फिजाई ऑपरेशन दौरान 37 दहशतगर्दन के मारे वो। सरहदी इलाके में खारजन जहा थाक भी तबाह किया वया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दी के खात्मे लाए सदाई वसीलन की खोट जो पिटको कंदी है। मसलो फंड्स न पर नीयत जो है। सोहेल आफरीदी कुछ नथो करे सके तो घर हलो वे। यो तय है तो इस्लामाबाद तरफ कें अचन न डो वो। सुदसम वफाकी वजीर अता तारड़ कोहाट में मीडिया से गालबोल कंदे है तो डिजणा दहशतगर्द लिकी हमला कर रहा है। धरती के बहादुर पुटन मुल्की दिफा लाए जान जहा नजराना पेश कया। सभी के गर्जी दहशतगर्दी जो नासूर खत्म करो पवो।

पर जेल मुंतकिल कयो वियो आहे। गुज़िरियल ॾींहुं अलीमा ख़ान खे बि नज़रबंद कयो वियो हो। वॾे वज़ीर सिंध में पोलियो मुहिम जो इफ़्तिताह करे छॾियो। 27 सेप्टेम्बर ताईं जारी पोलियो मुहिम दौरान 25 लख खां वधीक ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा फुड़ा पीआरिया वेंदा। इफ़्तिताही तक़रीब खे ख़िताब कंदे मुराद अली शाह चयो त समूरी दुनिया जीअं पाकिस्तान मां बि पोलियो ख़तमु कयो वेंदो। आलिम सगोरा पोलियो मुहिम कामयाब करण लाइ किरदारु अदा कनि। सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच सखर में घोटकी जी फहमीदा बिताफ़ी केस जी ॿुधणी आई जी सिंध ऐं घरू सेक्रेटरी अदालत में पेश न थिया। अदालत पुलिस खे नारे जी बाज़ियाबी लाइ वधीक 2 हफ़्तनि जी मोहलत ॾेई छॾी। ॿुधणीअ दौरान एडिशनल आई जी शर्जील खरल, डी आई जी सखर नासिर आफ़्ताब पठाण, एस एस पी घोटकी अनवर खेतरान, ए एस पी सखर सुहेब अहमद ऐं ॿिया पेश थिया। एडिशनल आई जी रिपोर्ट जमा कराईंदे चयो त नारीअ खे बाज़ियाब कराइण लाइ कोशिशूं जारी आहिनि। बासर सरदार खां बि पुछा ॻाछा कई वई आहे।